स्वामी अपना नाउ नानक कर्म है आया जियो माज महला पंजवा सोन सोन जीवा सोए तुम्हारी तू प्रीतम ठाकुर आत भारी तुमरे करतब तुब ही जन हो तुमरी ओट गोपाला जियो गुण गावत मन हरिया होवै कथा सुनत मन सगली खोवै भेटत संग सार संतन कै सदा जपाओ दयाला जियो प्रभ अपना सास सास मारो ए मत गुर प्रसाद मन धाराओ तुमरी कृपा ते होए प्रगासा सर्व माया प्रतपाला जियो सत सत सत प्रभ सोई सरा सरा सद आपे होई चलत तुम्हारे प्रगट प्यारे देख नानक भय निहाला जियो माज महला पंजवा हुक्मी वरसन लागे मेहा साजन संत मिल नाम जपेहा शीतल सांत सहज सुख पाया ठाड़ पाई प्रभ आपे जियो साब केछ बहुत बहुत उपाया कर कृपा प्रभ सगल रजाया दात करोह मेरे दातारा जी जंद प्राभ जी जंद साब त्रापे जियो सच्चा साहिब सच्ची नाई गुर प्रसाद ते ससरा त्याई जानम मरण पै काटे मोहा बिनसे सोग संतापे जियो सास सास नानक सा लाहे सिमरत नाम काटे सब फाहे पूर्ण आस करी खिन पीतर हार हार हार गुण जापे जियो माज महला पंजवा आओ साजन संत मीत प्यारे मेल गाव है गुण अगम अपारे गाव सुनत सबे ही मुक्ते सो त्याय जेन हम किए जियो जानम जन्म के किल विख जाव है मन चिंदे से ही फल पाव है सिमर साहिब सो सत स्वामी रिजक सब सकाउ दिए जियो नाम जापत सर्व सुख पाई है सब पाओ बिन सहार हर त्याई है जिन सेवे आसो पार गिरामी कारज सगले थिये जियो आए पया तेरी सरनाई ज्यो भावै त्यो लह मिलाई कर कृपा प्राप भक्ति लाभ हो सच नानक अमृत पिए जियो माज महला पंजवा भये कृपाल गोविंद गुसाई मेघ वरसा सबनी थाई दीन दयाल सदा किरपाला ठाड़ पाई करतारे जियो अपने जी जंद ब्रत पारे ज्यो वारक माता सम्मारे दुख भंजन सुख सागर स्वामी देत सगल आहारे जियो जाल थलपूर रहया मेहरवाना सद बलिहार जाइय कुरबाना रैन दिनस ते ससरा त्याई जेखिन मह सगल उधारे जियो राख लिये सगले प्राभ आपे उतर गए सब सोग संतापे नाम जबत मान तन हरियावल प्राभ नानक नदर निहारे जियो माज महला पंजवा जिथै नाम जपिय प्राभ प्यारे से अस्थिन चो से अस्थल सोइन चौबारे जिथै नाम न जपिय मेरे गोविंदा से नगर उजाड़ी जियो हर रुखी रोटी खाए समाले हर अंतर बाहर नदर निहाले खाए खाए करे बद फैली जान विसुकी वाड़ी जियो संता से तिरंग न लाए साकत संग विकर्म कमाए दुर्लभ देह खोई अज्ञानी जड़े अपनी आप उपाड़ी जियो तेरी सारण मेरे दीन दयाला सुख सागर मेरे गुरगो पाला कर कृपा नानक गुणगा वह राखो सरण असाड़ी जियो माज महला पंजवा चरण ठाकुर के हृदय समाने काल क्लेश सब दूर पय आने सांत सुख सहज धुन उपजी साधु संग निवासा जियो लागी प्रीत न टूटे मूले हर अंतर बाहर रहया भार पूरे सिमर सिमर सिमर गुणगावा काटी जमकी फासा जियो अमृत वरख अणहद बाणी मन तन अंतर सांत समाणी सिरपत अघाय रहे जन तेरे सतगुर किया दिलासा जियो जिस का सा तिस्ते फल पाया कर कृपा प्रभ संग मिलाया आवन जान रहे बाड भागी नानक पूर्ण आसा जियो माज महला पंजवा मीह पाया परमेसर पाया जी जंद सब सुखी वसाया गया।

बेनंती ठाकुर मेरा पूर्ण होई काली जियो सर्ब जी आ कहो देवनहारा गौर प्रसादी नदर निहारा जाल थल महियाल साहब तृप्ताने साधु चरण बखाली जियो मन की इच्छ पुजावन।

भय प्राप्त उठे गुर पूरे के चरण मन बुठे। सहज समाद लगी लेब अंतर सो रस सोई जाने जियो। अगम गोचर साहिब मेरा घाट घट अंतर वरते नेरा। सदा अलिपत जिया का दात को बिरला आप पछाणे जियो। प्रभ मिलने की ए हनी साणी मान इको सच्चा हुक्म पछाणी। सहज संतोख सदा तृप्ता सिम।

दया गोपाल गुसाई गुर के चरण वसे मन माहे अंगीकार किया तिन करतै दुख का डेरा ढाहे आ जियो मन तन वसिया सच्चा सोई बिखड़ा थान न दिसै कोई दूत दुश्मन सब सज्जन होए एको स्वामी आहे आ जियो जो के छ करे सो आपे आपै बुद्ध सियाण किशु न जापै अपने आ संतानो आप सहाई प्रभ।

अहो कम लगे जिस मीठा जियो साब परोई एक धागे जिस लाई लाई सो चरणी लागे ऊंद काबल जिस होए प्रगासा तेन सर्ब निरंजन डीठा जियो तेरी महिमा तू है जान है अपना अपना आप तू आप पछाण है हम बले हारी संतन तेरे जेन काम क्रोध लोभ पीठा जियो तू निर्वैर संत तेरे निर्मल जिन देखे सब उतर है कलमल नाम नानक नाम त्याए त्याए जीव बिनसे ब्रह्म भाओ तीठा जियो मांझ महला पंजवा झूठा मंगन जे कोई मंग है तेस कौमर ते घड़ी न लागै पार ब्रह्म जो साध ही सेवै सो गोर मिल निचल कहना प्रेम भगत जिसकै मन लागी गोर न गावै अनदिन नित जागी बाह पकड़ ते स्वामी मेलै जिसकै मस्तक लहना चरण चरण कमल भगता मन उठे जवेन परमेश्वर सगले मुठे संत जना की धूड़ नित वांछ है नाम सच्चे का गहना उठत बैठत हार हर गाइय जिस सिमरत वार निचल

वै सोई बूझै गुण कह गुणी समावणया। हाओ वारी जियो वारी हर का नाम मन वसावणया। जो साचो लागे से अणदन जागे दार सच्चै सोभा पावणया। रहाओ आप सुनै तै आपे वेखै जिसनो नदर करे सोई जन लेखै आपे लाई लाए सो लागै गुरमुख सच कमावणया। जिसे आप भुलाए सो किथै हाथ पाए पूर्व लिखिया सो मेटणा ना जाय। जेन सतगुर मिलिया सेवड़ भागी पूरा कर्म मिला बनया। पेई अड़ै धन आन दिन सुती कंत विसारी अवगुण मुती अण दिन सदा फिरै बिल लादी पेर बेन पिर नीद ना पावणया। पेई अड़ै सुखदाता जाता होमै मार गुर शब्द पछाता से सुहावी सदा पेर रावे सच सी गार बना बनया। लख चौरासी हजी उपाय जिसनु नदर करे तिस गुरु मिलाए। किल बिख काट सदा जान निर्मल दर सच्चै नाम सुहावणया।

पूरे गुर कै शब्द मिलाए नानक ना मिले बड़े आई आपे मेल मिला बनया माझ महला तीजा इको आप फिर परछन ना गोर मुख वेखाता एहो मन भिन्ना तृष्णा ताज सहज सुख पाया एको मन वसा बनया हो वारी जी ओ वारी एक सिव चित लावणया गुरमति मन

चुकाया सदा सुख पाया गुर प्रसाद परम पद पाया अंतर निर्मल निर्मल बाणी हर गुण सहजे गावणे आ सिमरत सासत वेद बखाणे परमे भूला तातो न जाने बिन सतगुर सेवे सुख न पाए दुखो दुख कमावणे आ आप करे किसे आखे कोई आखण जाइए जे भूला होई नानक आपे करे कराए नामे नाम समावणे आ माज महला तीजा आपे रंगे सहज सुभाए गुर कै शब्द राहर रंग चढ़ाए।

तेन सच्ची लिब लागी हर नाम संभाल है सेवड़ भागी सच्चा है साबद आप मिलाए सतसंगत सच गुण गा बनया लेखा पढ़िए जे लेखे विच होवे ओहो अगम्य गोचर साबद सुध होवे आन देन सुध

भाए दुख पावणे अज सयंत्र प्रीत लगै सो मुक्ता इंद्री वास सच संजम जुगता गुर कै साबद सदा हर ध्याए एहा भगत हर भावणे आ गुरमुख भगत जुग चारे होई होर भगत न पाए कोई नानक नाम गुर भगती पाई है।

लिखदया लिखदया कागद मसखोई दूजा पाए सुख पाए न कोई कूड़ लिख है तै कूड़ कमाव है जाल जाव है कूड़ चित लावणया गुरमुख सचो सच लिख है विचार से जन सच्चे पाव है मुख द्वार सच कागद कलम मसवाणी सच लिख सच समावणया मेरा प्राव यंत्र बैठा वेख है गुर प्रसादी मिले सोई।

मूल है माया, सिमरत शास्त्र जिन उपाया, काम क्रोध पसरिया संसारे, आए जाए दुख पावने आप। तेस विच ज्ञान रतन एक पाया, गुर प्रसादी मन वसाया, जेत जात सात संयम साच कमावे, गुर पूरे नाम ते आपने आ। पेयड़ तन परम भुलाणी, दूजे लागी फिर पछताणी, हालत परत दो वै गवाए, सुपने सुख न पावने आ। पेयड़ तन कंत समाले, गुर प्रसादी वेखै नाले, फिर कैसा जर है रंग राती, शब्द सिंगार बनावने आ। सफल जन्म बेंजना सतगुर पाया, दूजा भाओ गुर शब्द जलाया, एको रब रहिया घट अंतर, मिल सरसंगत हर गुण गावनिया, सतगुर ना सेवे सो काहे आया, त्रिक जीवन बिरसा जन्म गवाया। मन मुख नाम चेतना आवे, बिर नावे बहु दुख पावने, जन सिस साजी सोई जाने, आपे मिले शब्द पछाणे, नानक नाम लिखे नानक नाम मिलिया तिन जन को, जिन तुर मस्तक लेख लिखावने। माज महला तीजा, माज महला चौथा, आद पुरुष अपरंपर आपे, आपे थापे थाप उथापे, सब मह वरतए को सोई, गुरमुख शोभा पावने। हौ वारी जीओ वारी, निरंकारी नाम त्यावने, तिस रूप न देखिया घट घट देखिया, गुरमुख लख लिखावने। रहाओ तू दयाल कृपाल प्रभ सोई, तुद बिन दूजा वरना कोई, गुर प्रसाद करे नाम देवै, नामे नाम समावने। तू आपे सच्चा सृजन हारा, भक्ति भरे तेरे भंडारा, गुरमुख नाम मिलै मन भीजै, सहज समाध लगावने। आनंदन गुण गावा प्रभ तेरे, तुरसाला ही प्रीतम मेरे, तुद बिन अवरना कोई, जाचा गुर प्रसादी तू पावने। आगमा गोचर मित नहीं पाई, अपनी कृपा करे तू लह मिलाई, पूरे गुर कै शब्द ते आई, शब्द सेव सुख पावने। रसना गुणवंती गुण गावे, नाम सलाहे सच्चे पावे, गुरमुख सदा रह रंग राती, मिल सच्चे शोभा पावने। मन मुख कर्म करे अहंकारी, जुए जन्म सबा जी हारी, अंतर लोभ महा गुबारा, फेर फेर गुणवंती फेर फेर आवन जावने। अंतर लोभ महा गुबारा, फिर फिर आवन जावने, आपे करता दे वडे आई, जिनको आप लिख तुर पाई, नानक नाम मिले पौ पंजन, गुर शब्दी सुख पावने। माज महला पंजवा, घर पहला, अंतर अलख न जाई, लखिया नाम रतन लै गुजा रखिया, आगमा गोचर सब ते उचा, गुर कै शब्द लिखावने। हौ वारी जियो वारी, कल मह नाम सुनावने, संत प्यारे सच्चे तहरे, वडभागी दर्शन पावने। रहाओ साधिक सिद्ध जसै कौ, फिर दे ब्रह्मे इंद्र, ब्रह्मे इंद्र ध्यान हिरदे, कोट ते तीसा खोजे ता को, गुर मिल हिरदय गावने। आठ पहर तुद जापे पवना, धरती सेवक पायक चरना, खाणी बाणी सर्व निवासी, सबना कै मन भावने। साचा साहिब गुरमुख जापै, पूरे गुर कै शब्द सियापै, जिन पिया से त्रिपदा से, सच्चे सच अगावने। तिस घर सहजा सोई सुहेला, आनंद विनोद करे सदकेला, सो धनवंत सो वाढ साहा, जो गुर चरणी मन लावने। पहलो दे तै रिजक समाहा, पिछो दे तै जंत उपाहा, तुर जेवड़ दाता अवर न स्वामी, लवै न कोई लावने। जेस तू तुठा सो तुद त्याए, सार जना का मंत्र कमाए, आप तरह सगले कोल तारे, तिस दरगह ठाक न पावने। तू वड्डा तू उचो उचा, तू बेअंत आत्म उचो मूचा, हौ कुरबाणी तेरे वन्या, नानक दास दसापने। माज महला पंजवा, कौन सुमुखता कौन सुजुगता, कौन सुज्ञानी कौन सुभक्ता, कौन सुगृही कौन उदासी, कौन सुकीमत पाए जियो, किन विद वाधा किन विद छूटा, किन विद आवन जावन टूटा, कौन कर्म कौन नहि कर्मा, कौन सुख है कहाए जियो, कौन सुखिया कौन सुदुखिया, कौन सुसनमुख कौन बेमुखिया, किन विद मिलिया किन विद बिछरा, एह विद कौन प्रगटाए जियो, कौन सो अखर जेत धावत रहता, कौन उपदेश जेत दुख सुख सम सहता, कौन सुचाल जेत पार ब्रह्म ध्याए, किन विद कीर्तन गाए जियो, गुरमुख मुखता गुरमुख जुगता, गुरमुख ज्ञानी गुरमुख भगता, धन गिरही उदासी गुरमुख, गुरमुख कीमत पाए जियो, हौ मैं बाधा गुरमुख छूटा, गुरमुख आवन जावन टूटा, गुरमुख कर्म गुरमुख निहकर्मा, गुरमुख करे सो पाए सो सुभाए जियो, गुरमुख कर्म गुरमुख निहकर्मा, गुरमुख करे सो सुभाए जियो, गुरमुख सुखिया गुरमुख मनमुख दुखिया, गुरमुख सुखिया मनमुख दुखिया, गुरमुख सनमुख मनमुख बेमुखिया, गुरमुख मिलिया मनमुख बिछड़ा, गुरमुख विद प्रगटाए जियो,
ਗੁਰਮੁਖ ਅੱਖਰ ਜਿਤ ਧਾਵਤ ਰਹਿਤਾ ਗੁਰਮੁਖ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਸਮ ਸਹਿਤਾ ਗੁਰਮੁਖ ਚਾਲ ਚਿਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਧਿਆਏ ਗੁਰਮੁਖ ਚਾਲ ਜਿਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਧਿਆਏ ਗੁਰਮੁਖ ਕੀਰਤਨ ਗਾਏ ਜੀਓ ਸਗਲੀ ਬਣਤ ਬਣਾਏ ਆਪੇ ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਥਾਪੇ ਇਕਸ ਤੇ ਹੋਇਓ ਅਨੰਤਾ ਨਾਨਕ ਏਕਸ ਮਹਿ ਸਮਾਏ ਜੀਓ ਮਾਜ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਪ੍ਰਭ ਅਵਿਨਾਸੀ ਤਾ ਕਿਆ ਕਾੜਾ ਹਰ ਭਗਵੰਤਾ ਤਾ ਜਨ ਖਰਾ ਸੁਖਾਲਾ

तेरा कीता जिस लागै मीठा घट घट पार ब्रह्म तेन जन डीठा सान थनंतर तू है एको एक वरता बनिया सगल मनोरथ तू देवन हारा भगती पाहे भरे भंडारा दया तहार राखे तुद से पूरा कर्म समावणिया अंध कूब ते कंडे चाड़े कर कृपा दास नदर निहाले गुण गावे पूरन विनासी कह सोन तोड़ ना आवणिया ऐथे उथे तू है रखवाला मात गर्व मैं तुम ही पाला माया अगर न पोहे तिनको रंग रते गुण गावणिया क्या गुण तेरे आख संभाली मन तन अंतर तुद नदर निहाली तू मेरा मीत साजन मेरा स्वामी तुद बिन अवरना जानणिया तेस को तू प्रभ भया सहाई तेस तत्ती वाव न लगै काई तू साहिब सरण सुखदाता सत संगत जब प्रगटा बनिया तू ऊच अथाह अपार अमोला तू साचा साहिब दास तेरा गोला तू मेरा साची ठगुराई नानक बाल बाल जा बनिया माज महला पंजवा घर दूजा नित नित दयो संभाली है मूल अमर विसारी है रहाव संता संगत पाई है जित जम कै पंथ न जाइय तोसा हर का नाम लै तेरे कुल का लागै गाल जियो जो सिमरंदे साई है नरक न सेई पाई है तत्ती वाव न लग गई निन मन बुठा आए जियो सेई सुंदर सोहने सार संग जिन बैहने हार तन जनी संजया से गंभीर पार जियो हर अम्यो रसायन पीवी है मोह जिठे जन कै जीवी है कार्ज सब सवार लै नित पूज गुर के पाप जियो जो हर कीता अपना तिन्ह गुसाई जापना सो सूरा प्रधान सो मस्तक जिसद भाग जियो मन मंदे प्रभ अवगाहिया एह रस

प्रभ मिलह प्राप्त होए, वह साख सुहावा तां लगै, जब संत भेटै हर सोए। हर जेठ जुणंदा लोड़ीऐ, जिस अगै सब निवन, हर सज्जन दावन लगिया किसै ना देई बन। माणक मोती नाम प्राप्त।

हर खै सोग विजोग उपाय खपाया, मूर्ख गणत गणाए चखड़ा पाया, सतगुर हाथ नबेड़ चखड़ चुकाया, करता करे सो होग ना चला चलाया। श्लोक महला पहला। कूड़ बोल मुरदार खाए, अवरे नो समझावन जाए, मुठा आप मुहाए साथ है, नानक ऐसा आगू जापे। महला चौथा। जिस दै अंदर सच है सो सच्चा नाम मोख सच अलाए, ओह हर मार्ग आप चलदा होर ना नो हर मार्ग पाए। जे अग्गे तीर्थ होए ता मल लहै, छप्पड़ नहातै सगवी मल लाए, तीर्थ पूरा सतगुरु जो अन दिन हर हर नाम ते आए। ओ आप छुट्टा कुटुंब स्यो दे हर हर नाम सब शिष छड़ाए।

बोला जे समझाई है पढ़ी है सिमरत पाठ अंधा चानन रखी है दीवे बलह पचास चौने सोए ना पाई है चुन चुन कावे खास लोहा मारन पाई है टहे ना होए कपास नानक मूर्ख एह गुण बोले सदा विनाश महला पहला कहा चंदन टुटै सार अग्नि गंढ पाए लोहार गोरी सेती टुटै पतार पुतनी गंढ पवे संसार राजा मंगै दित्तै गंढ पाए भुखिया गंढ पवे जागाए काला गंढन दिया मीह झोल गंढ प्रीति मिठे बोल बेदा गंढ बोले सच कोए मोया गंढ नेकी सात होए एद गंढ वरतै संसार मूर्ख गंढ पवे मोह मार नानक आखे एह बीचार सिफती गंढ पवे दरबार पौड़ी आपे कुदरत साज के आपे करे विचार एक खोटे एक खरे आपे परखनहार खरे खजाने पाई है खोटे सटी है बाहर वार खोटे सच्ची दरगह सुटी है केस अग्गै करे पुकार सतगुर पिछे भज पवे एहा करनी सार सतगुर खोटे हो खरे करे शब्द सुवारन हार सच्ची दरगह मनियन गुर कह प्रेम प्यार गणत तना दी को क्या करे जो आप बखसे करतार श्लोक महला पहला हम जेर जमी दुनिया पीरा मसायका राया मेर वैद बाद साहा अफजू खुदाए एक तू ही महला पहला ना देव दान वाना ना सिद्ध साधिका तरहा अस्त एक दिगर कोई एक तुई महला पहला ना दादे देहंद आदमी ना सप्त जेर जमी अस्त एक दिगार कोई एक तुई महला पहला ना सूर सस मंडलो ना सप्त दीप नह जलो अन पौन थिर ना कोई एक तुई महला पहला ना रिजक दस्त आकसे हमारा एक आवसे हमारा एक आस बसे अस्त एक डिगर कोई एक तुई महला पहला प्रंदे ना गिराह जार दरख्त आब आस कर दिहंद सोई एक तुई महला पहला नानक ललार लिखिया सोए मेड़ न साके कोई कला तरह हिरे सोई एक तुई पौड़ी सच्चा तेरा हुक्म गुरमुख जानिया गुरमति आप गवाए सच पछाणिया सच तेरा दरबार शब्द निशाणिया शब्द सच्चा शब्द विचार सच्चा शब्द विचार सच समाणिया मन हुक सदा कूड़े यार परम भुलाणिया विस्टा अंदर वास साध न जानिया बिन नावे दुख पाए आपन जानिया नानक पारख आप जिन खोटा खरा पछाणिया श्लोक महला पहला सीहा बाजा चरगा कुहिया एना खवाले काह काह खान तिना मास खवाले एह चलाए राह नदिया विच टिब्बे दे खाले थली करे असगाह कीड़ा थाप दे पातशाही लश्कर करे स्वाह जेते जी जी वह लै साहा जी वाले ताके असाह नानक ज्यो ज्यो सच्चे पावे त्यो त्यो दे ग्राह महला पहला एक मासाहारी एक तृण खाहे एक ना छत्ती अमृत पाहे एक मिटिया मह मिटिया खाहे एक पौन सुमारी पौन सुमार एक निरंकारी नाम आधार जीवे दाता मरे ना कोई नानक मुठे जाहि नाही मन सोए पौड़ी पूरे गुर के कार कर्म कमाईया गुरमती आप गवाए नाम तिहाईया दूजी कार लाग जन्म गवाईया बिन नावे सब वेस बैजे खाईया सच्चा सब सलाहे सच समाईया बिन सतगुर सेवे नाही सुख निवास फिर आईया दुनिया खोटी रास कूट कमाईया नानक सच खरा सलाहे पातशाह जाईया श्लोक महला पहला तुद पावे ता गावे गावे तुद पावे जल नावे जा तुद पावे ता करे विभूता सिंगी नाद बजावे जा तुद पावे ता पड़े कतेबा मुला सिख कहावे जा तुद पावे ता होवे राजे रास कास बहुत कमावे जा तुद पावे तेग बगावे सिर मुंडी कट जावे जा तुद पावे जा जसंतर सुन गल्ला कर आवे जा तुद पावे नाय रचावे तुद पाणे तू पावे नानक एक कह बेनंती होर सगले कूड़ कमावे महला पहला जा तू वड्डा सब वड्डे आई आ चंगा चंगा होई जा तू सच्चा ता सब को सच्चा कूड़ा कोई ना कोई आखन वेखन बोलन चलन जीवन मरना तहाज हुक्म साज हुक्मे विच रखै नानक सच्चा आप पौड़ी सतगुर सेवन संग परम चुकाई है सतगुर आखे कार सुकार कमाई है सतगुर होए दयाल त नाम त्याई है लाहा भगत सुकार लाहा भगत सुसार गुण पाई है मरम कूड़ गुबार कूड़ कमाई है सच्चे दै दर जाए सच चमाई है सच्चा अंदर महल सच बुलाई है नानक सच सच्चा सच्चियार सच समाई है श्लोक महला पहला काल काती राजे का साई धर्म पंख कर उडरिया कूड़ अमावस सच चंद्रमा दिसै नाही कह चढ़िया हाउ पहल विकुन्नी होई आधे रह राह न कोई विच हमें कर दुख रोई कहो नानक किन वेद गात होई महला तीजा काल कीरत प्रगट चानन संसार गुरमुख कोई उतरे पार जिसनो नदर करे तिस देवै नानक गुरमुख रतन सो लेवै पौड़ी भगता तैसै सारिया
ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਕਰਤਾ ਆਪ ਭੁੱਲ ਹੈ ਨਾ ਭੁੱਲੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੁਲਾਇਆ। ਭਗਤ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਹਨ ਜਿਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ। ਸਹਿ ਸਾਰੀ ਆਪ ਖੁਆਏ ਹਨ ਜਿਨੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਬੋਲ ਬੇਖ ਖਾਇਆ। ਚੱਲਣ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵੇਸ ਵਧਾਇਆ। ਭਗਤ ਕਰਨ ਹਰ ਚੱਕਰੀ ਜਿਨਾ ਅਨੰਦ ਨਾਮ ਤਿਹਾਇਆ। ਦਸ ਦਾਸ ਹੋਏ ਕੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਖਸਮੈ ਕੈ ਦਰ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਸੱਚੈ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਇਆ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸਬਾਹੀ ਸਾਲਾਹ ਜਿਨੀ ਤਿਹਾਇਆ। ਇੱਕ ਮਨ ਸਹੀ ਪੂਰੇ ਸਾਹ ਵਖਤੈ ਉੱਪਰ ਲੜ ਮੋਏ। ਦੂਜੇ ਬਹੁਤੇ ਰਾਹ ਮਨ ਕੀਆ ਮੱਤੀ ਖਿੰਡੀਆ। ਬਹੁਤ ਪਏ ਅਸਗਾਹ ਗੋਤੇ ਖਾਏ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਤੀਜੇ ਮੋਹੀ ਗਰਾਹ ਭੁੱਖ ਤਿਖਾ ਦੋਏ ਪੱਕੀਆ। ਖਾਦਾ ਹੋਏ ਸਵਾਹ ਪੀ ਖਾਣੇ ਸਿਓ ਦੋਸਤੀ। ਚੌਥੇ ਆਈ ਊਂਗ ਅੱਖੀ ਮੀਟ ਪਵਾਰ ਗਿਆ। ਪੀ ਉਠ ਰਚੇ ਓਨ ਵਾਦ ਸਹਿਬਰਿਆ ਕੀ ਪਿੜ ਪੱਧੀ। ਸਭੇ ਵੇਲਾ ਵਖਤ ਸਭ ਜੇ ਅੱਠੀ

जागरण संसारस गौर प्रसादी तरह के करण कारण सम्राट है कहो नानक विचार कारण करते वास है जैन काल रखी तहार पौड़ी खस मैं कह दरबार ढाडी वसया सच्चा खसम कल्याण कमल विकसया खसम पूरा पाए मनो रहस्या दुश्मन कड्डे मार सज्जन सरसिया सच्चा सतगुरु सेवन सच्चा मार्ग दसिया सच्चा शब्द विचार काल विदोसिया ढाडी कथे अकथ शब्द सवारिया नानक गुण गहरास हर जियो मिले प्यारिया शोक महला पहला खते हो जमे खते करन ता खतिया विच पाहे धोते मूल न उतरे जे सो धोवन पाहे नानक बख्शे बख्शी है ना ही तपाही पाहे महला पहला नानक बोलन चखना दुख छड मंगी है सोखा सुख दुख दोए कर हादार कपड़े पहरे जाए मनुख जिथे बोलन हारिया तिथे चंगी चुप पौड़ी चारे कुंडा देख अंदर भालिया सच्चा पुरख अलख सिर ज निहालिया उजड़ भुले राह गुर वेखा लिया सतगुर सच्चे वाह सच संभालिया पाया रतन कराह दीवा बालिया सच्चा सब सलाह सुखिय सच बालिया निडरिया डर लग गर्भ से गालिया नावह भुला जग फिर बेतालिया श्लोक महला तीजा भै विच जमे पह मरै पी पहो मान मह होए नानक भै विच जे मरै सहला आया सोए महला तीजा भै बिन जीवै बहुत बहुत खुशिया खुशी कमाए नानक भै बिन जे मरै मोह कालै उठ जाए पौड़ी सतगुरु होए दयाल ता सरदा पूरी है सतगुरु होए दयाल न कबहू चूरी है

जोगत समाणी वुठे अनक माद कपाहा सबसे पर्दा होवे वुठे काहो चरह नित सुर ही सातन दही बलोवे तेत के होम जग सद पूजा पया कार्य सो है गुरु समुंद नदी सब सिखी नाते जित वडियाई नानक जे सुर खुथे नावन नाही ता सात चट्टे सुर छाई महला दूजा अग्गी पाला के करे सूरज के ही रात चंद अनेरा के करे पौन पानी क्या जात धरती चीजी के करे जिस विच सब किछ होए नानक तापत जानिए जापत रखे सोए पौड़ी तुद सच्चे सुबहान सदा कलाणिया तू सच्चा दीबान हो रावण जानिया सच जे मंगे दान से तुदै जेहिया सच तेरा फुनमान सबदे सोहया मन्या ज्ञान ते हन तुदै ते पाया कर्म पाया निशान न चलै चलाया तू सचा दा तारण नित चढ़ै देवह चढ़ै सवाया नानक मंगै दान जो तुद पाया श्लोक महला दूजा दिखिया आख बुझाया सिफती सच समेओ तिन को क्या उपदेसी है जिन गुरु नानक देव महला पहला आप बुझाए सोई बूझै जिस आप सुझाए ते सब किछ सूझै कह कह कसना माया लूझै हुक्मी सगल करे आकार हुक्मी सगल करे आकार आपे जाने सर्व विचार अखर नानक अखेओ आप लह प्रहात होवे जिस दात पौड़ी हौ ढाडी वेकार कार लाया रात दह कै वार तुरो फरमाया ढाडी सच्चा महल खसम बुलाया सच्ची सिफत सा लाह कपड़ा पाया सच्चा अमृत नाम भोजन खाया।

वा इंद्री एक स्वाओ दृष्ट विकारी ना ही पाहो पहाओ दृष्ट विकारी नहीं पाहो पहाओ आप मारेता पाए नाओ शब्द मरे फिर मरना होए बिन मुए क्यों पूरा होए प्रपंच व्याप रहे मान दोए चर नारायण करे सो होए बोहित चढ़ो जा व्यवहार ठाके बोहित ठाके बोहित दरगह मार साचा लाही धन गुरुद्वार नानक दर कारी कंकार गौड़ी महला पहला उल्ट्यो कमल ब्रह्म विचार अमृत हर गगन दास द्वार त्रिभुवन वेद्या आमरार रे मन मेरे परमना की जय मन माने अमृत रस बीज रहाओ जन्म जीत मरण मन मान्या आप मुआ मान मन ते जानिया नाजर पही कर करते जान्या जर सर तीर्थ मजन नाम अधिक विस्तार अधिक विथार करो किस काम नर नारायण अंतर जावन आन मनाओ तो पार कर जाओ किस जाचो नाही को था नान गुरमत सह समाओ गौड़ी महला पहला सतगुर मिलै सो मरण दिखाए मरण रहन रस अमृत पाए गर्भ निवार गगन पुर पोर पाए मरण लिखाए आए नहीं रहना हर जाप जाप रहन हर सरना रहाओ सतगुर मिलै तो दुबदा भाग्य कमल विकास मान हर प्रभ लागै जीवन मरै महारस आगै सतगुर मिले सच संजम सूचा हर की पौड़ी ऊंचो ऊंचा कर्म मिले जामका पहमूचा गुर मिले मल अंक समाया कर कृपा कर महल दिखाया नानक हमे मार मिलाया गौड़ी महला पहला किरत पया नह मेटा को क्या जाना क्या गय होए जो तिस बहाना सोई हुआ वरना करने वाला दुआ ना जाना कर्म केवट तेरी दाद कर्म धर्म तेरे नहीं जात रहाओ कर्म धर्म तेरे नाम की जात रहाओ तू एवड दाता देवन हार तोड़ना ही तुल भगत भंडार किया गर्म ना आवे रास जियो पिंड सब तेरे पास तू मार जीवा लह बख्श मिलाए जो पहा ज्यो भावी त्यो नाम जपाए तू दाना बीना साचा सिर मेरा गुरमत दे भरोसा तेरा तान मह मैल नाही मन राता गुरबचनी सच शब्द पछाता तेरा तान नाम की वड्याई तेरा तान नाम की वड्याई नानक रहना भगत सरणाई गौड़ी महला पहला जिन अकाथ कहे जिन अकाथ कहाया अप्यो पियाया आन पह विसरे नाम समाया क्या डरिया डर डर समाना पूरे गुर कह शब्द पछाना रहाओ जिस नर राम हृदय रास जिस नर राम हृदय हर रास सहज सुभाए मिले साबास जाय सवार साज बयाल एत उदमान हुआ दे काल एह नेस राम हृदय से पूरे नानक राम मिले ब्रह्म दूरे गौड़ी महला पहला जन्म रह त्रै गुण हितकार चारे वेद कथ है आकार तीन अवस्था कहया वख्यान तुरिया अवस्था सतगुर ते हर जान तीन अवस्था कह है वख्यान तुरिया अवस्था सतगुर ते हर जान राम भगत गुर सेवा तरना बहुत जन्म ना होए है मरण ना रहाओ चार पदार्थ कह सब को सिमरत सास पंडित मुख सोए बेन गुर अर्थ विचार न पाया मुक्त पदार्थ भगत हर पाया जाग हृदय वसया हर सोई गुरमुख भगत प्राप्त होई हर की भगत मुक्त आनंद गुरमत पाए परमानंद जिन पाया गुर देख दिखाया आसा माह निराश बुझाया दीना नाथ सर्व सुखदाता नानक हर चरणी मन दाता गौड़ी चेती महला पहला अमृत काया रह सुखाली बाजी एह संसारो लाभ लोभ मुझ कूड़ कमावे बहुत उठावे पारो तू काया मैं रुलदी देखी जो तर ऊपर छारो सुन सुन सिख हमारी सुकृत कीता रहसी मेरे जियड़े बहुना वे बारी रहाओ हो तद आखा मेरी काया तू सुन सिख हमारी निंदा चिंदा करे पराई झूठी लाए तुवारी वेल पराई जो है जियड़े करे चोरी बरयारी हंस तलिया तू पिछे रही है छूट है हुई है नारी तू काया रही है सुपनंतर तुद क्या कर्म कमाया कर चोरी मैं जाके चलिया ता मन पला पाया हलतना सोभा पलतना ढोई अहला जन्म गवाया।

हाव केते रोख बिरख हम चीने केते पशु उपाए केते नाग कुली में आए केते पंख उड़ाए हट पटन बिज मंदर पन्ने कर चोरी कर आवे अगो देखे पिछो देखे तुझते कहा छपावे तर तीर्थ हाम नाव खंड देखे हट पटन बाजारा लैके तकड़ी तोलन लागा।

डुबदे पत्थर तारे, जीड़ा अगन बराबर तपै पीतर वगै काती, प्रणवत नानक हुक्म पछाणै सुख होवै दिन राती, गौड़ी बैरागण महला पहला, रैन गवाई सोए कै दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए, नाम ना जान्या राम का मूड़े फिर पाछे पछता हिरे रहाओ, अनता तन तरणी तरे अनत ना चाहया जाए, अनत को चाहन जोगे सो आए अनत गवाए, अपन लिया जे मिले ता सब को भागट होए, कर्मा उपर निबड़ै जे लोचै सब कोई, नानक करना जिन किया सोई, सार करे हुक्म ना जापी खसम का किसै वडाई, दे गौड़ी बैरागण महला पहला, हारणी होवा बन वसा कंद मूल चुन खाओ, गुर प्रसादी मेरा सौ मिलै वार वार हो जाओ, जियो मैं बनजारन राम के तेरा नाम वखर वापार जी रहाओ, कोकिल होवा अंब बसा सहज शब्द विचार, सहज सुभाए मेरा सौ मिलै दर्शन रूप अपार, मछली होवा जल बसा जी जंत सब सार, और वार पार मेरा सौ वसै हो मिलाओगी बह पसार, नागन होवा तर बसा शब्द वसै पहु जाए, नानक सदा सुहागणी जन ज्योति जोर समाए, कौड़ी पूर्वी दीप की महला पहला एक ओंकार, सतगुर प्रसाद जय कर कीर्त आखी है करते का होए बीचारो, तेत कर गाव हो सोहिला सिवर हो सिरजन हारो, तुम गाव हो मेरे निरपहो का सोहिला हो वारी जाओ, जेत सोहिला सदा सुख होए रहाओ, नित नित जीड़े समाली अना देखेगा देवन हार, तेरे दान कीमत ना पवै तिस दाते कवन सुमार,

गुरमुख प्राणी हर नाम हर ध्याए, जन्म जीत लाहा नाम पाए रहाओ। ज्ञान ध्यान गुर शब्द है मीठा, गुर कृपा ते कना बिरला चख डीठा। कर्म कांड बहु करै आचार, बिन नावै त्रिग त्रिग अहंकार। बंधन बाध्यो माया फास, जन नानक छूटै गुर प्रगास। महला तीजा गौड़ी बैरागण, जैसी धरती ऊपर मेघला बरसत है, क्या धरती मधे पानी नाही। जैसे धरती मधे पानी परगासिया, बिन पगा बरसत फिराही। बाबा तू ऐसे भरम चुकाही, जो किश करत है सोई कोई है रे, तैसे जाय समाही रहा। स्त्री पुरख होए कै क्या ओए कर्म कमाही, नाना रूप सदा है तेरे तुझी माहे समाही। इतने जन्म भूल परे से, जा पाया ता भूले नाही। जा का कार्ज सोई पर जाना, जे गुर का शब्द समाही। तेरा शब्द तू है, तेरा शब्द तू है।

मन मुख मिला सजाए मेरे मन गुर चरणी चित लाए गुरमुख नाम निधान लाए दरगाह लाए छाए रहाओ लख चौरासी भरम दे मन हट जावै जाए गुर का शब्द न चीने फिर जोनी पाए गुरमुख पछाणिया हर नाम वस्या मन आए अन दिन भगती रत्या हर नामे सुख समाए मन शब्द मरै प्रतीत होए हों मैं तजे विकार जन नान करमी पाईयन हरनामा भगत भंडार कौड़ी बैरागण महला तीजा पेई अड़ाए दिन चार है हर हर लिख पाया शोभा बंती नार है गुरमुख गुण गाया पे वकड़ा गुण संभलै सहुरै वास पाया गुरमुख सह समाणिया हर हर नाम हर हर मन पाया ससुरै पेयै पिर वसै कहो कित बिद पाइयै आव निरंजन अलख है आपे मेलाइयै रहाओ आपे ही प्रभ देहि मत हर नाम त्याइयै वडभागी सतगुर मिलै मुख अमृत पाइयै होमै दुबदा बिन सजाए सजे सुख समाइयै सब आपे आप वरतदा आपे नाए लाइयै मन मुख गर्भ ना पायो अज्ञान अयाणे सतगुर सेवा ना करहै फिर पछताणे गर्भ जोनी वास पाए दे गर्भे गल जाने मेरे करते एवै भावदा मन मुख प्रमाणे मेरा हर प्रभ लेख लिखाया।

हर आपे जोगी डंडा तारी, हरे आपे रव रहा बनवारी, हरे आपे तप तापै लाए तारी, ऐसा मेरा राम रहा भरपूर, निकट बसा नाही हर दूर रहो, हरे आपे शब्द सुरत धुन आपे, हरे आपे विखै विकसा आपे, हरे आप जपाए आपे हर जापे, हरे आपे सारंग अमृत तारा, हर अमृत आप पियावन हारा, हर नाप करे आपे निस्तारा, हरे आपे बेड़ी तुलहा तारा, हरे आपे गुरमती निस्तारा, हरे आपे नानक पावै पारा, गौड़ी बैरागण महला चौथा, साहो हमारा तू तनी, जैसी तू रास देहे, तैसी हम लेहे, हर नाम वणजै रंग सियो।

सुख मने तोट मर जाई। जो गुण साजी गुर स्यो करे नित नित सुख पाई। जितनी भूख अनरस साध है तितनी भूख फिर लागै। जिस हर आप कृपा करे सो विचे सिर गुर आगै।

जैसी गगन परंती उड़ती कपरे बागे वाली और आखा चीत पीछे बिच बचरे नित हरदा सार संभाली त्यो सतगुर सिख प्रीत हर हर की गुर रख गुर सिख रख जिया नाली जैसे काती तीस बत्तीस है बिच रख रसना मास रत केरी कोई जानो मास काती कह किश हाथ है सब बस गत है हर केरी त्यो संत जना की नर निंदा कर है हर रखै पै जन केरी भाई मत कोई जान हा किसी का एक शहात है सब करे कराया जरा मरा ताप सिरत साप सब हर कै वस है कोई लाग न सकै बिन हर का लाया।

मन होए आनंद सो सतगुर कहिया मन की दुविधा बिन सजाए हर परम पद लहिया मेरा सतगुर प्यारा कित बिद मिलै खाओ खेन खेन करी नमस्कार मेरा गुर पूरा क्यों मिलै रहाओ कार कृपा हर मेलिया मेरा सतगुर पूरा इश पुनियन केरिया ले सतगुर धूरा हर भगत रड़ावै हर भगत सुनै जिस सतगुर तिस सतगुर मिलिया तोटा मूला आवई हर लाभ नित दृढ़िया जिस

हर जन हर हर नाम समाणे दुख जन मरण पाव खंडा है अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु सोभ खंड ब्रह्मंडा है हम गरीब मस्कीन प्रभु तेरे हर राख राख वड वड्डा है जन नानक नाम आधार टेक हर नामे ही सुख मंडा है गौड़ी पूर्वी महला चौथा गौड़ी पूर्वी महला चौथा इस गढ़ में है हर राम राय है के साधना पावे धीठा हर दीन दयाल अनुग्रह किया हर गुरसवधी चख डीठा राम हर कीर्तन गुर लिव मीठा रहाओ हर अगम अगोचर पार ब्रह्म है मिल सतगुर लाग बसीटा जिन गुर बचन सुखाने हीया रह तन आगा आन परीटा मन मुख ही यरा अत कठोर है तने अंतर कार करीटा बिसियर कबो दूध पिया जा बेख निकस फूल फुलीटा हर प्रभ आन मिलावो गुर साधु घास गरुड़ शब्द मुख लीटा जन नानक गुर के लाले गोले लग संगत करुआ मीठा गौड़ी पूर्वी महला चौथा

मन रसक रसक हर रस आगाने फिर बहुर न भूख लगावै कोई करा उपाव अनेक बहु तेरे बिन कृपा नाम न पावै जन नानक हर कृपा तारी मत गुरमत नाम दृढ़ावै गौड़ी पूरा गौड़ी मां ज महला चौथा गुरमुख जिंदु जप नाम करमा मात माता मत जियो नाम मोकरामा संतोख पिता कार गुरपुरख अजन्मा वडभागी मिल रामा गुरजोगी पुरख मिलया रंग माणी जियो गोर हार रंग रतड़ा सदा निर्माणी जियो वडभागी मिल सुगड़ सो जानी जियो मेरा मन तन हर रंग भिन्ना आव संतो मिल नाम जपाहा विस संगत नाम सदा लैलाहा जियो हर के कर सेवा संत अमृत मुखपा जियो मिल पूर्व लिखे अड़े तुर करमा सावन वर्ष अमृत जग छाया जियो मन मोर कोह के अगड़ा शब्द मुख पाया हर अमृत बुठड़ा मिलया हर राया जियो जन नानक प्रेम रतना गौड़ी माज महला चौथा आओ सखी गुण कामन करिया जियो मिल संत जना रंग मान है रलिया जियो गुरदीपक ज्ञान सदा मन बलिया जियो हर टुटे ढोल ढोल मिलिया जियो मेरा मन तन प्रेम लगार ढोले जियो मैं मेले मित्र सतगुरु वे चोले।

उस खेत कारण राखा कड़ा है, तिसका पाला कछु न पड़ा है। जिसका राज तस का सुपना, जिन माया दीनी तिन लाई तृष्णा, या बिना आपे करे रास। नानक प्रभु आगे अरदास।

प्रभु कौ जाने सदी संगा ठाकुर नाम कियो अनुवर्तन तृप्त अगावन हर कै दर्शन हर संग राते मन तन हरे गुरपुरे की सरनी परे रहो चरण कमल आत्म आधार एक निहार है आज्ञाकार एको बनज एको ब्योहारी अव न जाने बिन निरंकारी हरख सोग दुहू ते मुक्ते सदा अलिप्त जोगर जुगते दिस है सब मैं सब मह रहते पार ब्रह्म का ओ ध्यान धरते संतन की महिमा का मन बखाना आगाध बोध किस्मित नहीं जाना पार ब्रह्म ओ कृपा की जय धूर संतन की नानक दी जय।

श्रवण सोए सुन निंद विचार, रसना सोई लोभ मीठा साध, मन सोया माया बिस्माद। इस ग्रह में कोई जागत रह, सावत वस्तु वस्त ओ अपनी लह, रहो सकल सहेली अपना रस समाती, ग्रह अपने की खबर न जाती। मुफसन हार पंच बटवारे, सुने नगर परे ठग हारे। हुण ते राखै बावना माई, हुण ते राखै मीत न पाई, सर्ब ध्यान सर्ब दर्ब सियाणप ना ओहिरा ते, साध संग दुष्ट वस होते। कर कृपा मोहि सारंग पाण, संतन तूर सर्व।

तेरी कोई अख नहीं, सारियां अखां तेरियां ने। तेरे कोई पैर नहीं, सारे पैर तेरे ने। तेरे कोई हाथ नहीं, सारे ही हाथ तेरे। रीति पहली हो गई, किस तरह पकड़ोगे गुरु नानक दी इस गल नूं? निर्गुण रूप दे कोई तेरी अख नहीं, पर सारियां अखां तेरियां ने। तू करता है और ये कृत है, और तू अपने कृत दे च बैठा हुआ है। अपने कृत तो वक नहीं है, करता पुरख। पुरख कहिंदे ने पूरे होया, व्यापक। अपने कृत दे विच तू बैठा है, कृत तो अलग नहीं। जे अखां तेरियां कृत ने तो अख दे च तो ही है। नक तेरी कृत है तो नक दे च तो ही है। हथ तेरी कृत है तो हथां दे च तो ही है। पैर तेरी कृत है तो पैरां दे च तो ही है। दिन तेरी कृत है तो दिन दे च तो ही है। रात तेरी कृत है तो रात दे च तो ही है। सूरज तेरी कृत है तो सूरज दे च तो ही है। इसनु इस तरह लेना है। सहस तो नैन नना नैन है तो एको, सहस मूरत नना एक तोई। तेरी कोई अख नहीं, सारियां अखां तेरियां ने। तेरी कोई मूरत नहीं, सारियां मूरतां जो है तेरियां ने। इत सब व्यापक है, सब सिलसिला जो है तेरा है। तो खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा, इकबाल ने जिस ढंग नाल गोष्ठी लिखी है बयान करा। खुदा ने मनुख नूं आख्या, जहां राज यक आब गिल आफरेदम, तो ईरान ता तार जंग आफरेदी। इस तरह के जेडे शायर कवि आंदे ना, जिवें कदी आसमान ते बिजली चमकदी है एवें एक छिण वास्ते, एक सैकंड वास्ते। कदी कदी इस तरह के शायर, इस तरह के कवि किसी वक्त एक लम्हे वास्ते, एक सैकंड वास्ते पूरे ब्रह्म ज्ञानी आउंदे ने। उस विच जदों इन्हां नूं इह झलक मिलदी है, अगे पिछे नहीं आउंदे। संत हो जो हर वक्त संत है, मिलिया होए ना विछड़े, जे मिलिया होई, मिल गया विछड़दा नहीं। बूंद सागर विच मिल गई। इस तरह दे शायर, इस तरह दे कवि इतने गहरे, कदी कदी इन्हां नूं एक झलक मिलदी है, इस तरह जिवें अंधेरे च कोई बिजली चमकी है, ते थोड़ा जिहा चानना हो गया, लिशकारा हो गया। इस वास्ते उस समय इन्हां दे आखे हुए जिहड़े बोल आउंदे ने, ब्रह्म ज्ञानियां नाल मेल खा जांदे ने, महापुरशां नाल मेल खा जांदे ने। जैसे इकबाल कहिंदा है, दरम्यान कारे दरिया तख्ता बदम करदा अमी, बास में गोयन के दामन तरमकुन होशियार बास। ऐ प्रभु, तख्ते नाल तू मैनू पक्का बन के दरिया दे सुट दिता है, ते हुण तू मैनू ए कह रहा है भिजी भी ना, ते किनारे ते लग जा। ते हुण किनारे ते लगना मेरी मर्जी है, ते भिजा ना हुण मेरी मर्जी है, तू ते बन के रख दिता मैनू। दरम्यान कारे दरिया तख्ता बदम करदा मी, बाज में गोयन के तामन तरम कुन होशियार बास। सब कुछ हो रहा है, मैं कर नहीं रहा। इकबाल, सब कुछ हो रहा है, मैं तेरी कृत ते कृत देश तो बैठा है, हो रहे हैं, मैं नहीं कर रहा, मैं हां ही नहीं। बाज में गोयन के दामन तरम कुन होशियार बास। सूफी संता ने भी इस मामले बहुत कुछ किया। खैर मुख्तसर में अर्ज करा, इकबाल कहने ने, जहां राज यक आब गिल आफरे दम, तू ईरान ता तार जंग आफरी दी। ऐ मनुख देख, मैं जमीन बनाई, दरिया बनाए, पहाड़ बनाए, ते जिथे जिथे तक तेरी पहुंच हुई तू वंड के रख दिता। किधरे अफगानिस्तान बना दिता, ईरान बना दिता, तातार बना दिता, टर्की तुर्की बना दिता। इन्हां मुल्कां दे उसने नाम लिखे ने अपने रदीफ काफी दी चाल दे कविता दे। ए तू की कीता, जमीन तू इस तरह वंडी क्यों, तू टुकड़े टुकड़े क्यों कीती। जहां राज यक आबो गिल आफरी दम, तू ईरान ता

कुछ उपनिषदां दे ज्ञानी कहंदे ने ओ ओम है, कुछ कहंदे ने ओ अहंकार है। ते मैं रात अर्ज कीती सी 4000 साल पुराना तीर्थ है भारत विच नर्मदा दे कंडे ते, इस तीर्थ दा नां है ओ अहंकार। 4000 साल पुराना मंदिर है, पहाड़ नूं तराश के जो बनाया गया उस मंदिर दा नां है ओ अहंकार। रेलवे स्टेशन दा नां ओ अहंकार है, शहर दा नां ओ अहंकार है, मंदिर दा नां ओ अहंकार है। धन गुरु नानक देव जी महाराज दक्षिण दी फेरी ते इस तीर्थ ते आंदियां जांदियां रुके ने। जन्म साखी तेंज मिलदा है जांदियां ही रुके ने, पर पिछले साल मध्य भारत गवर्नमेंट ने किताबचा छापिया सी और वंडिया सी, अद की कुंभ ते भी वंडिया गया भाई। आंदियां जांदियां दोवे वक्त ओ ओंकारेश्वर ठहरे ने, ओ ओंकार जी दे ठहरे ने गुरु नानक। पिछे जद कुंभ दा मेला सी ना, सर्व धर्म सम्मेलन सी, सिख धर्म दी तरफों दास नूं बुलाया गया सी, मैं पहुंचिया सी। 4 करोड़ दे करीब मनुखां ने एक महीने च उजैन दे सिपरा नदी दे इशनान कीता है। 4 करोड़, ये 4 करोड़ जिथे कुंभ ते उजैन आए, ये फिर सारे ओंकारेश्वर भी गए। टेम्परेरी 4 पुल नवे बनाने पे गवर्नमेंट, क्योंकि भीड़ जो इतनी, मंदिर दा जाण दा रस्ता होर बनाया गया, आण दा रस्ता होर बनाया गया। इन्नी भीड़ ने जो दर्शन करने, 4 करोड़ ने एक महीने विच आना है, लखां दी गिणती रोज पहुंचदी है। उस मंदिर तो कोई 100 गज की दूरी ते गुरुद्वारा है, उस गुरुद्वारे का नाम है गुरुद्वारा ओंकार, जिथे धन गुरु नानक देव जी महाराज ने वो बाणी उचारण की, जिस बाणी का नाम है दक्षिणी ओंकार, रामकली दक्षिणी ओंकार। ओंकार ब्रह्मा उत्पत, ओंकार किया जन चित, ओंकार सैल जुग वाय, ओंकार वेद निर्वय। महाराज कहते सारा पसारा ओंकार तो है, मता कोई कहे होर शब्द है होर शब्द है, तो सतगुर ने एक लाया नहीं, एक ओंकार, एक ही शब्द है, दूजा नहीं है। ये इस वास्ते भी भारत देश ते ये 2 शब्दां की गल है, ओंकार ते ओम। इस्लाम दे बाने मोहम्मद साहब कहंदे ने ओ शब्द है कुन, तो मुसलमाना दे कुन मनदे ने। ईसाई जगत विच मनदे ने उस शब्द लोगोस है। गर्स के जिस जिस ढंग नाल पकड़ दे चाहिए, वो अनाहद नाहद है जो सुनाई देता है गुरु नानक नो कहंदे ने ओंकार, सुनाई देता है महावीर नो कहंदे ने ओंकार है, सुनाई देता है भगत कबीर नो कहंदे ने ओंकार है, और सुनाई देता है धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज नो कहंदे ने ओंकार है। उन्हां दे बोल ओंकार आद कथनी अनाद, जाप साहब ओंकार अनादि कथनी है, पहला बोल है ओंकार, ब्रह्मंड दी पहली आवाज है, पहला शब्द है। ये शब्द इसे तो ही संसार दा आवना होया, कीता पसाओ एको कवा, एक कवाओ होया ओंकार, उस तो ही संसार दा पसारा होया। किस तरह होया, तिस्ते होए लख दरिया, उसे कवाओ तो जिंदगी दे लखां दरिया पैदा हो गए, बहु अनंत सूरज पैदा हो गए जो लखे नहीं जा सकते, गिने नहीं जा सकते। एक एक सूरज दे फिर कई कई टुकड़े बने, कई कोट ससियर सूर निकत्र, कई करोड़ा, एक एक सूरज दे फिर कई कई टुकड़े आए। ये जमीन उसे सूरज का एक टुकड़ा, धुंध पानी बन गई, और वो टुकड़ा जो वास्तविक अग का गोला से, अग का गोला ही सी,

जपो त एको नामा अवर निराफल कामा अवर काज तेरे किते ना काम मिल साध संगत भज केवल नाम ए रब्बी दौलत ए रब्बी सवात धन गुरु नानक देव जी महाराज सारियां दी झोली च पावे सारियां दियां झोलियां भरन सारियां दी जिंदगी सफल होवे सारियां दा और इत्थों दे मुखी सजणां दा सारियां दा बार बार हार्दिक तौर ते धन्यवाद बोल चुक दी शमा वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पवित्र बाणी ए तुर की बाणी दुखां दा कलेशां दा नाश करन वाली बाणी एक ओंकार तो लैके 18 10 20 तक सारी बाणी सर्व कल्याण करन वाली कल्याण रूप बाणी है। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वाल जाती पाईए हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नू दसदे हन के जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तो दुख नहीं निकलता, किसे नू मुकदमा पै गया, किसे दे घर औलाद नहीं होई तां दुखी है, जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह दे होर दुख हन, इना सारियां ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोविंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा वैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना तो मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी, एथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए तां फिर दुख नेड़े नहीं आ सकदे। आओ सारे गुरु की बाणी दा ए अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी तां है ही ऐसी।

0: नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ अष्टपदी
1: पूरे गुर का सुन उपदेश
0: वाह ब्रह्म निकट कर पेख
1: सा सा सिमर हो गोबिंद
0: मन अंतर की उतरे चिंद
1: आस अनित त्याग हो तरंग
0: संत जना के तुहर मन मंग
1: आप छोड़ बेनती करहो
0: साथ संग अग्न सागर तरहो
1: हर धन के भर ले हो भंडार
0: नानक गुर पूरे नमस्कार
1: खेम कुशल सहज आनंद
0: साथ संग पर परमानंद
1: नरक निवार उधारो जियो
0: गुण गोबिंद अमृत रस पियो
1: चित चित्त हो नारायण एक
0: एक रूप जाके रंग अनेक
1: गोपाल दमोदर दीन दयाल
0: दुख भंजन पूर्ण कृपाल
1: सिमर सिमर नाम बारंबार
0: नानक जी का यह आधार
1: उत्तम श्लोक साध के बचन
0: अमलीक लाल यह रतन
1: संत कमाप्त हो उदहार
0: आप त्रैलोक का निस्तार
1: सफल जीवन सफलता का संग
0: जाके मन लागा हर रंग
1: जय जय शब्द अनाहत बाजय
0: सुन सुन अनंत करे प्रभु गाजय
1: रखे गोपाल महांत कह माथे
0: नानक उदरे तिन कै साथे
1: शरण जोग सुन सरनी आए
0: कर कृपा प्रभु आप मलाए
1: मिट गए बैर भय सब रीन
0: अमृत नाम साध संग लैन
1: सुप्रसन्न भय गुरुदेव
0: पूर्ण हो ही सेवक की सेवा
1: आज जंजाल विकार के रहते
0: राम नाम सुन रसना कहते
1: कर प्रसाद दया प्रभु धारी
0: नानक नभी खेप हमारी
1: प्रभु की उस्तुत करो संत मीत
0: सावधान एकाग्र चीत
1: सुख मनी सहज गोबिंद गुण नाम
0: जिस मन बसे सहोत निधान
1: सब इच्छा ता की पूर्ण होए
0: बलदान पुरख प्रगट सब लोए
1: सब दे ऊच पाए स्थान
0: और न होवे आवन जान
1: हर तन खाट चले जन सोए
0: नानक जिसे प्राप्त होए
1: खेम शांत रिद नव निध
0: बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध
1: विद्या तप जोग प्रभु ध्यान
0: ज्ञान श्रेष्ठी उत्तम स्नान
1: चार पदार्थ कमल प्रकाश
0: सबके मत सगल ते उदास
1: सुंदर चतुर तत् का बेता
0: समदर्शी एक दृष्टिता
1: ये फल तिस जन के मुख भने
0: गुरु नानक नाम वचन मन सुने
1: एहो निधान जपै मन कोए
0: सब जुग मैता की गत होए
1: गुण गोबिंद नाम धुन बाणी
0: समर्थ शास्त्र वेद बखानी
1: सकल मतांत केवल हर नाम
0: गोविंद भगत के मन विश्राम
1: कोट अपराध साध संग मिटै
0: संत कृपा ते जमते छुटै
1: जाके मस्तक कर्म प्रभ पाए
0: साध शरण नानक ते आए
1: जिस मन बसै सुने लाई प्रीत
0: जन आवे हर प्रभु चीत
1: जन्म मरणता का दुख निवार है
0: दुर्लभ दे तत्काल उधार है
1: निर्मल शोभा अमृतता की बानी
0: एक नाम मन माहि समानी
1: दुख रोग बिन से भय भरम
0: साध नाम निर्मलता के कर्म
1: सबते ऊचता की शोभा बनी
0: नानक एह गुण नाम

0: सच बुझाया सच बुझाया
1: पौड़ी नदर करे जे अपनी तो अनदर सतगुर पाया यह जियो बहुत जन्म भ्रमिया ता सतगुर शब्द सुनाया सतगुरु जे वरदाता को नहीं सब सुनियो लोक सुभाया सतगुरु मिलिया सच पाया जिन विचो आप गवाया जिन सचो सच बुझाया जिन सचो सच बुझाया
0: असा महला चौथा

निरंकार है न लइए नरक न जाइए जियो पिंड सब दिसदा देखा जे आख गवाइए जे लोड़े है चंगा अपना कर पुनो नीज सदाइए जे जरवाना पर हरे जरवेश करंदी आइए कोर

पौड़ी बिन सतगुरु कि ना पायो, बिन सतगुरु कि ना पाया। सतगुरु विच आप रखे उनकर प्रगटाक सुनाया। सतगुरु मिल गए सदा मुक्त है जिन विच हमो चुकाया। उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे स्यों चितलाया। जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता पाया।

पौड़ी सेब की दिशन तो खी जिन्हें सचो सच ते आया ओनी मंदे पैर ना रखे उन कर सोके तो धर्म कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी छोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला नित देवे चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्याई वड्डा पाया।

पौड़ी सच्चा साहेब एक तुझने सचो सच बरताया, जिस तू दहेज से मिले सच ता तिने सच कमाया, सतगुर मिलिए सच पाया, जिनके हृदय

0: चौक मोहल्ला पहला पर गड्डी लदिए पर भरिए साथ पर बेड़ी पाइए पर गड्डिए खास पढ़िए है जेते वर्ष पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती आर जा पढ़िए जेते सास नानक लेके एक गल होर हो में जखना चा
1: पहला लिखल पढ़िया ते ता कड़िया बहुत तीर्थ पव्या ते तो लव्या

0: तुम्हा पुरा तपे का सत गिर तुम्हा हो काजुगरा थगन का पूरा गैर तुम्हा हो।
1: पहला शाम कहे सितंबर समय सच में आशा सच रहे।

0: ब्राह्मण वटे आए कोहे बकरा रिन खाया। सबको आख पाए हुए प्राणा सटिए भी फिर पाया होर नानक तग न टुटे जे तग होवे जो।
1: महला पहला नाई मनिए पत उपजे साला ही ससूत दरगे अंदर पाइये तग न टूट सपूत। महला पहला तग ना इंद्री तग ना नारी पलके थुक पड़े निदारी तग ना प्यारी तग ना हथी तग ना जेवा तग ना की बे तग आया पे बते बड़ता।

गुरु कहे धन मेरा जमका डंड मुंड में लागे हिणमे करिन मेरा हर जन उत्तम भगत सदावे आग्या मसुर पाए ज्योतिष पावे सर कृपाणे पाणा मनु साई कहे कबीर सुनर संत मेरी।

नवाय अब मोहे नाचनो नावे मेरा मन मंदरी अनम जावे रहो काम क्रो माले जारी तृष्णा गागल हूटी काम चलना पै प्राणा गया परम सब छूटी सर्व भूत एके हर जाने चूके बाल वादा कह गिरवे पूरा पै पै राम प्रसाद आसा रोजा धरे मना अलो स्वा जी संगारे आपा दे अव देखे काहे को चक मारे काजी सर एक तुह मैं तेरा सोचा देखे खबर न करे दिन के बोरे ताते जन अलेखे हो सार देव खान अलो नार पुरख ने कोई पड़े हु ना कुछ बोरे जो दल में

पहने कोई तुम सुकंदार हम सोई कैत गिर सुनरे लोई आव तुमरी प्रतीत न होई आसा क्रोरी क्रम मर्म जाना सब जो अंत न तन न रहो जब तुम सुन ले वेद प्राणा तब हम इतने पसरो तना धर्म आकाश की कर बनाई चंद सूर्य सास चलाई पाई जोर बात किन्नी तय तांति मन मरना जलाहे कर अपना चीना कट ही राम चन्ना कैश वीर प्रण फिर तोरी सूते सुर मिलाई गोर

पाठ पर अपना खसम त्यागो सोने की सोई रुपये का धागा नामे का चेत हसो लागा सा साप कुन छोड़े बेखने छाडे उधर मैं जैसे भगत ध्यान मांड काहे को बीजे ध्यान जपंदा जपते सो नाही मन अपना हो सिंह के भोजन जो नर जाने ऐसे ही ठग देव खान।

कैसे मन तरे गारे संसार सागर बैठे को बना झूठी मैं देख के भूला रे मन रहा शिपे के कर जन्म दैला हुरप दे पहला संतान के प्रसाद नामा हर बेटला सा बाणी श्री उदास जीव के कौन का सर्व प्रसाद मरे गमीन प्रण पतन कुंजर ए दोष मनास पंच दो साध जामे ताकि केतन आस

ज्ञान जाने संत देवा देव संत जी संग संत कथारा संत प्रेमा जय दीजे देवा देव राव संत आचरण संतो मार संत उलंघनी और चिंता जने रखाव संत पापी सन रविदास पण जाने संत अनंत अंतर नाय आसा तुम चंदन हम इराट बाबरे सन तुम्हारे वासा ऊच नीच रूपते उच पै ग्रंथ सुन वासा माधव सासन सन तुम्हारी हम अवगुण तुम उपकारी रहा तुम तूस बेस बिल हम बपरे जसकीरा सत्संग रही माधो जैसे मधुम खीरा जाति उषा पाति उषा उषा जन्म हमारा

योजन सुने सरदा पुर से हर कृपा हर निस्तारे राम मुको हरजन हर मेर प्यारे मेर प्रीतम प्राण सर्व गुण पूरा पापी गुर निस्तारे रहाव गुरमुख वड़भागी वड़भागे जिन हर हर नाम उदारे हर हर अमृत हर स पावे गुरमत भगत भंडारे जिन दर्शन सर्व

ले जिन वचन गुरु सतगुर मन पाया हड़भागे हुरके सिख प्यारे हर निर्वाणी निर्वाण पद पाया सत संग हुरकी हर प्यारी जिन हर हर नाम मीठा मन पाया जिन सरगुरु संग संगण पाया।

कर जाए। ऐसा सतगुरु जय मलाय तुठा करे बसाओ, मुख द्वारा मोह कला सहजे आवो जाओ। महला तीजा नानक मुख द्वारा आत निका नाना होए सो जाए, हमें मान असत हुले क्यों कार्य सदा जाए।

पौड़ी ढाडी करे पुकार प्रभु सुनाए सी अंदर तीरक होए पूरा पाए सी जो तुर लिखया लेख से कर्म कमाए सी जा होवे खसम दिया महल कर पाए सी सोपरा मेरा अत वड्डा गुरमुख मेलाए सी श्लोक महला तीजा सबना का सौ एक है सदी रह हजूर नानक हुक्म न मनई ता करी अंदर दूर हुक्म पीत न मनाए सी जिनको नजर करे हुक्म मन सुख पाया प्रेम

जिंदड़िए हर हाजर नदरी आइए राम से भग से सेवक मेरी जिंदड़िए जो हर प्रभ मेरे मन पाने राम से हर दर कह पहनाया मेरी जिंदड़िए।

0: फैमिली केयर फार्मेसी
1: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
0: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
1: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
0: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
1: फ्री प्लेस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
2: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
0: जा कॉल किरण @604581190।

0: फैमिली केयर फार्मेसी
1: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
0: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
1: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
0: हुन मोबिलिटी एड रेंट जां बाय भी कर सकदे हो।
1: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
2: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
0: जां कॉल किरण @604581-1900।

गुरु रूप सत्संग जीओ फतेह प्रवान करने वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धार्मिक पुरुषों ने खास करके धार्मिक लिखारी साहित्यकार विद्वान उन्हां दा ऐसा कहना है कि मनुखा नूं पंज श्रेणियां विच वंडिया जा सकता है, या इंज कह लईए मनुख धार्मिक दृष्टिकोण दे मुताबक पंज तरह दे ही हुंदे ने। इह किस्मां मैं थोड़े सामने रखा और इस विच ये देखांगे आपां कि असी किथे खड़े हैं। इन्हां पंजां विच पहली श्रेणी, दूजी श्रेणी, तीजी श्रेणी, चौथी या पंजवें, प्रथम श्रेणी पहली श्रेणी इसनूं वो इस तरह बयान कर देना, कुछ पूर्ण पुरख जो पूर्ण हो गए। ते पूर्ण कदों होंदा है मनुख? जद पूर्ण नाल जुड़दा है। पूरा प्रभ आराधया, पूरा जाका नाओ, नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ। जितने चिर तक पूरे दी प्राप्ति नहीं, मनुख दा जन्म अधूरा है, जीवन अधूरा है, मरण भी अधूरा है। मरण इस वास्ते अधूरा है, तन ते खाक हो गया, राख हो गया, मन फिर जन्म लेने वास्ते तैयार हो गया। दूजा चोला जुग जुग मेर शरीर का वासना बद्धा आवे जाए। भाई गुरदास जी कहिंदे ने कई जन्मां तों मन वासना वस होके बार बार शरीर धारण करदा रहा, चोला बदलदा रहा। शरीर दे मरण दे नाल वासना नहीं मरदी, शरीर दी मौत अहंकार दी मौत नहीं है, शरीर दी मौत लोभ दी मौत नहीं है, शरीर दी मौत विकारां दी मौत नहीं। अगर होंदी तो जप तप दी लोड़ नहीं सी, सत्संग दी लोड़ नहीं सी, मरांगे ते अहंकार भी मर जाए, मरांगे ते विकार भी मर जाएंगे, मरांगे ते लोभ भी मर जाएगा, क्रोध भी मर जाएगा। नहीं मरदा शरीर, मरदा है अहंकार नहीं मरदा। शरीर बुढ़ा हो जाता है, वासना बुढ़ी नहीं होंदी। शरीर बिरद हो जाता है, लोभ बिरद नहीं आता। लोभ सदा जवान लेंदा है, अहंकार सदा जवान रहिंदा है, विकार सदा जवान रहिंदे, वासना सदा जवान रहिंदी। अगर शरीर दी मौत ही वासना दी मौत आउंदी, मैं फिर दोहरावां इस सत्संग दी लोड़ नहीं सी, कथा कीर्तन करन दी ते सुनन दी लोड़ नहीं सी, दान पुन जप तप दी लोड़ नहीं सी। शरीर दी मौत वासना दी मौत नहीं है, शरीर दी मौत अहंकार दी मौत नहीं है, शरीर दी मौत लोभ दी मौत नहीं है। शरीर बिरद हो गया, लोभ ते जवान है, बुढ़ा होंदा ही नहीं। शरीर ते बिरद हो गया, वासना ते बिरद होंदी नहीं, जवान है। शरीर बिरद हो गया, अहंकार ते जवान खड़ा। तो ये जवान वासना अगला जन्म करा दे, अगला जन्म करा दे। शरीर मर भी जांदा है, वासना नहीं मरदी। शरीर मर जांदा है, लोभ नहीं मरदा। भाई साहब भाई गुरदास जी धन गुरु नानक देव जी महाराज दे उच्चारण कीते आसा दीवार दे श्लोक दा इंज खुलासा करदे ने, जुग जुग मेर शरीर का वासना बद्धा आवे जाए,
फिर फेर वटाइए ज्ञानी होए मरम को पाए। कोई विरला ज्ञानी इस रमज नूं समझदा कि शरीर मर जांदा वासना नहीं मरदी, शरीर मर जांदा लोभ नहीं मरदा, शरीर मर जांदा अहंकार नहीं मरदा, तन दी मौत हो जांदी है मन दी नहीं होंदी, वो फिर दूसरा तन धारण कर लैंदा। वासना मर गई है, तन दी मौत नहीं है, इन्हों कहते हैं जीवन मुक्त। हंकार ते मर गया है, तन अजे जिंदा है, इन्हों कहते ने जीवदिया जी मुकत है मुकत। कहत कबीर जो हर ध्यावे जीवत बंधन तोरे, सारे बंधन टुट गए, बंधना दे चे नहीं जी रहा। हंकार दा बंधन आंदा है, लोभ दा बंधन आंदा है, वासना दा बंधन आंदा है, सब तोड़ देते हैं, सब टुट गए। तन दी मौत ते नहीं हुई, हंकार दी मौत हो गई है। शरीर ते नहीं मरिया, वासना मर गई है। शरीर ते नहीं मरिया, लोभ मर गया। बड़ी साधना कीती होनी है, बड़ा जप तप कीता होना है, अमृत वेले उठ के बड़ी ध्यान साधना कीती होनी है, उंज ते वासना नहीं मरदी, उंज ते लोभ नहीं मरदा, सिर्फ तन मर जांदा है। प्रकृति एक दिन तन नूं बुढ़ा कर देंदी है, मन नूं बिरद नहीं करदी। प्रकृति एक दिन तन नूं खत्म कर देंदी है, मन नूं खत्म नहीं करदी। जमना जीवना मरना प्राकृतिक है, प्रभु नाल मिलना पूर्ण होना प्राकृतिक नहीं है, प्रकृति तो बाहर आना है। तो हुण मैं फिर दोहरावां, इस चक्कर च ना पैणा, कई इस तरह सोचते रहिंदे जवान बुढ़े होवांगे अमृत छक लवांगे, बुढ़े होंदे होंदे तक वासना होर जवान हो गई। रोज रोज वासना जवान आउंदी है, बुढ़ी नहीं आउंदी, रोज रोज तन बुढ़ा हुंदा है। रोज रोज लोग जवान हो रहे हैं, बलवान हो रहे हैं, रोज रोज तन कमजोर हो रहे हैं, निर्बल हो रहे हैं। रोज रोज हंकार ताकतवर हो रहा है, रोज रोज तन कमजोर हो रहा है। तन दी मौत वासना दी मौत नहीं है, तन दी मौत हंकार दी मौत नहीं है, तन दी मौत लोभ दी मौत नहीं है। बच्चे दा तन छोटा है, उम्र छोटी है, वासना छोटी है, लोभ छोटा है, हंकार छोटा है। जवान है, अहंकार जवान हो गए, लोभ जवान हो गया, वासना बड़ी प्रबल जवान हो गई है, तन बुढ़ा हो गया है, कमजोर हो गया है। लोभ अहंकार वासना पहले नालों भी ज्यादा ताकतवर हो गई, शक्तिशाली हो गई, क्योंकि रोज रोज वासना शक्तिशाली होती है, रोज रोज अहंकार की ताकत बढ़ती है, रोज रोज लोभ दी ताकत वधदी है। इस वास्ते एक बुढ़ा मनुख जितना लोभी होंदा जवान नहीं होंदा, एक जवान मनुख जितना लोभी होंदा बच्चा तो उतना होंदा ही। ये भी मैं रोज रोज उम्र दे वधदियां लोभ बलवान होंदा है, अहंकार बलवान होंदा है, वासना बलवान होंदी है। आम लोगों का ख्याल है, सिर्फ आम लोगों का, धर्म का नहीं, महापुरुषों का नहीं, कोई बुढ़ा मनुख हो गया तो लोभ भी बुढ़ा हो गया होगा या मर गया होगा, वासना भी बिरद हो गई होगी या मर गई होगी, हंकार भी बुढ़ा हो गया होगा या मर गया होगा। भुलेख है, एवं भुलेख है, फिजूल भुलेख है। एक जवान के अंदर भी हंकार इतना बलवान नहीं होता जितना बुढ़े च होता है। आप सुन के हैरान होवोगे, सारी दुनिया के जड़े राजनैतिक लोग ने ना 97% बुढ़े ने, जो हुक्मरानी कर रहे ने, सारी दुनिया नू चला रहे ने, बिरद ने। कई तो ऐसे ने, चार बंदे
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਆਪ ਬੈਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹੱਥ ਕੰਬਦੇ ਨੇ, ਪੈਰ ਕੰਬਦੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਕੰਬਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਦੀ ਪਕੜ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ, ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ, ਹੰਕਾਰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਬਲ। ਸਮਾਜਿਕ ਚੌਧਰੀ, ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਚੌਧਰੀ 97% ਬੁੱਢੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਧਦਿਆਂ, ਉਮਰ ਦੇ ਵੱਧਦਿਆਂ ਹੰਕਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਲੋਭ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਭ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਕਰਾ ਦੇਣ। ਅਵਤਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੋਂ ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ, ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਜੰਮਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ? ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ? ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਰਉਪਕਾਰ, ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ। ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਲਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁਖਤ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਰਸ ਕਾ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਜਗਤ ਜਲ ਰਿਹਾ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਚ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਚ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਚ, ਲੋਭ ਦੇ ਚ, ਤਰਸ ਵੱਸ ਆ ਗਿਆ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਹੈ, ਜਣਾਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਵੰਡੀਏ। ਰਾਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆਮ ਸੰਸਾਰਕ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਛੁਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਖੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧਨ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਦੂਜਾ ਖੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਵੰਡਣ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਫ਼ਤ ਕੀ ਲੁੱਟ ਪਈ ਹੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਕੀ ਲੁੱਟ ਹੈ, ਲੁੱਟ ਸਕੇ ਤੋ ਲੁੱਟ, ਜਿੰਨਾ ਲੁੱਟਣਾ ਹੀ ਲੁੱਟ ਲੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਨ ਲੁੱਟੀਏ ਲੁਟੇਰੇ ਕਹਿ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਨ ਲੁੱਟੀਏ ਪਕੜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਭੋਗਾਂਗੇ, ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟੀਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਕੀ ਲੁੱਟ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਲੁੱਟਣਾ ਹੀ ਲੁੱਟ ਲੈ, ਕੋਈ ਰੋਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਿਆ, ਸਰੇਆਮ ਪਿਆ, ਲੁਟੇਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਖੂਬ ਲੁੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਕੀ ਲੁੱਟ ਹੈ, ਲੁੱਟ ਸਕੇ ਤੋ ਲੁੱਟ, ਫਿਰ ਪਾਛੇ ਪਛਤਾਓਗੇ ਜਬ ਪ੍ਰਾਣ ਜਾਏਗੇ ਛੋਟ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹੰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹਉਮੈ ਇਹ ਜਾਤ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਹਉਮੈ ਇਹੀ ਬੰਧਨਾ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਇਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਨਮੇ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਲੋਭ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਵਾਸ਼ਨਾ ਬੱਦਾ ਆਵੇ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਫਿਰ ਫੇਰ ਵਟਾਈਏ ਗੈਨੀ ਹੋਏ, ਮਰਮ ਕੋ ਪਾਏ। ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ,
ये लोभ करके नहीं आए, परोपकार करके आ गए। जन्म मरण दोहों में नाहीं, जन परोपकारी आए। मैं अर्ज करा, मन दा एक बहुत छोटा जिया भाग कीर्तन सुनदा है, कथा सुनदा है, पाठ सुनदा है, मन दे नौ हिस्से नहीं सुनदा है, नहीं सुनदा। चलो धन गुरु तेग बहादुर साहब जी का एक बोल सुन लो तो फिर गल स्पष्ट हो जाएगी। बिरथा कहो कवन स्यों मन के, मैं मन की हालत किनू दसा, किसनों दसू। बिरथा कहो कवन स्यों मन की, लोभ ग्रस्यो दस हो दिस धावत, आसा लाग्यो तन की हर वक्त धन दी आस। चाहे करोड़ा हो गए चाहे अरबा हो गए ने, आसा धन दी है, धर्म दी नहीं है। आसा पदार्थां दी है, परमात्मा दी नहीं है। आसा ये चलती है। लोभ ग्रस्यो दस हो दिस धावत, आसा लाग्यो तन की, सुख के हेत बहुत दुख पावत। सोचदा सी बहुता धन मिलेगा, बहुता सुख मिलेगा, जितना धन मिले उतना ही दुख मिले। चलो मैनू कहण देना ते माफी मैं पहले मंग लवां, कोई मनुख कितना दुखी है वेख लेना कितना धनवान है, बस जिन्ना धनवान है उतना ही दुखी है। बड़े बड़े जो दीसे लोग, तिनको व्यापे चिंता रोग। इस तरह के बंदे किधरे गुरुद्वार भी गुरुद्वारे भी आ जान, किथे प्रभु का चिंतन करते ने, अपनी चिंतावां च ही डुबे होंगे, उन्हों का मत्था ही दसदा है, अपनिया चिंतावां च ही गर्क होंगे। बिरथा कहो कवन स्यों मन के, लोभ ग्रस्यो दसहु दिस धावत, आसा लाग्यो तन के, सुख के हेत बहुत दुख पावत। सेव करत जन जन की, द्वारे द्वार स्वान ज्यो डोलत, नै सुध राम भजन के, मानस जन्म अकारत खोत। एना कीमती जन, मानस जन्म अकारत खोवत, लाज न लोक हसन की, नानक हर जस क्यों नहीं गावत, कुमत बिना से तन की। हरिदा जस गाते हरी हो जा, परमात्मा दे गुण गाते परमात्मा हो जा, क्यों नहीं करता। निकल जाए ना चिंतावां तो, इस बोझ तो, इस दुख तो, इस संताप तो। इस तरह की विद्या ज्ञान शिक्षा देने वास्ते, ये परोपकार वास्ते अवतारी पुरुष आ जाते हैं, वरना इन्हों आन की लोड़ नहीं, तो मुक्त आते हैं। मुक्त पुरुष किधरे भी जा सकते हैं। रविदास कहने ज्यों ज्यों सैर करे त्यों भावे, महरम महल न को अटकावे। कोई अटक नहीं, कोई रोक नहीं। एक ते जीवन मुक्त, जो मुक्त हो चुके ने, कोई रोक नहीं, किसे मंडल च जा सकते ने, कितने भी जा सकते, भ्रमण कर सकते। एक उन्होंने भी कोई रुकावट नहीं आती जिन्हों को तन ते नहीं आता। तन के अंदर जिहड़ा सूक्ष्म शरीर है, जिन्हों इनरल बॉडी करके कहिंदे ने, संस्कारां दा मुजस्मा जिस विच मन है, वो होंदा है, तन नहीं होंदा। एक तरीके की हवा होंदी है। ऐ तुसी कथा सुनदे पयो, ये पेट दे च जाएगी, खून दे च जाएगी, मांस दे च जाएगी, हड्डियां च जाएगी, कतई नहीं सूक्ष्म शरीर दे जाएगी। अगर सुन रहे हो कीर्तन तुसी सुनदे उहदे नाल कोई पेट भर जाएगा, अगर पेट भर जाएगा तो फिर लंगर कानू चलाए, किस वास्ते चलाए। कीर्तन नाल नहीं पेट भरदा, पेट पाठ नाल पेट नहीं भरदा, कथा नाल पेट नहीं भरदा, जप तप नाल पेट नहीं भरदा, लंगर चलाना पैंदा, पंगत बनाई सतगुरु ने। ये कथा कीर्तन जप तप मन दी खुराक है, तन दी नहीं है। पर मन खांदा नहीं, इस वास्ते सतगुरु कहिंदे जे को खावे
जेको भुनचे तिसका होयो उदार। कोई खावे ते सही है, नहीं खाते। मैं फिर अर्ज करा मन का एक छोटा जिहा भाग किधरे पाठ दे चाहुंदा बाकी नहीं आता। मन का एक छोटा जिहा भाग गुरुद्वारे आंदा बाकी नहीं आता। इस वास्ते कीर्तन कथा जप तप गुरबाणी मन तक जाती नहीं, मन विच प्रवेश नहीं करती। जे हुण भोजन की बुरकी तन विच गई नहीं तो खून कित्थों बनेगी, मास कित्थों बनेगी। गुरु का शब्द मन विच गया ही नहीं तो मुक्ति कित्थों नसीब होवेगी, बंधन किवें टुटणगे, आनंद किवें मिलेगा। शब्द मन तक नहीं जाता, ना जाण दा एक कारण भोजन की भुख तन नूं लगदी है, शब्द की भुख मन नूं नहीं है, नहीं है। नाम की भुख मन नूं नहीं है। खुशकिस्मत है वो मनुख जिन्हों नाम की भुख लग जाए। साचे नाम की लागे भूख, उद भूखे खाए चलिए दुख। खैर मिल मकावा ना। कुछ शरीर जो सूक्ष्म ने उन्हां दे उत्ते तन दा अस्थूल तन दा बंधन नहीं होंदा। इस अस्थूल तन दी अपनी सीमा है, सूक्ष्म दी सीमा नहीं, किधरे भी जा सकदा है। इस सूक्ष्म शरीर मुक्त आत्मावां कोल होंदे ने, मुक्त सिर्फ सूक्ष्म शरीर ने। परमात्मा दे च जी रहे ने, परमात्मा दे च विचर रहे ने, किधरे भी जान व्यापक है परमात्मा। किधरे किधरे फिर इस तन दे च आके जन्म ले लेंदे ने। वासना वस होके नहीं, परोपकार वस होके। जन्म मरण दोहों में नाही, जन परोपकारी आए। ते मैं ये अर्ज करा सूक्ष्म शरीर मुक्त शरीरों तो इलावा कुछ होर भी आते ने, देवत्या दे, ओतां ते प्रेतां दे, उन्हां कोल भी ये तन का बंधन नहीं होवे आंदा, जिथे चन जा सकते हैं। ये भी मैं अर्ज कर दिया। ठीक है, सनातनी ऐसा कहते ने जिथे रामायण की कथा होवे उथे हनुमान होंदा है। मैं कुछ ब्राह्मण वीरां नूं कथा वाचकां नूं कहिंज ना आख्या करो, अगर ये कहिंदे हो ते हनुमान मुक्त नहीं होया। अजे भी देवता, चलो देवता है पर भटक रहे, देवते भी भटकते हैं, भूत प्रेत भी भटकते हैं। इंज आख जिवें हनुमान प्यार करदा सी राम नाल, हनुमान दी तरह कोई प्यारियां रूहां उत्थे होंदियां ने जिथे रामायण दी कथा होवे। पहले तो मैं उंज उपरों उपरों कहिंदा सी, पर हुण मैं दावे नाल कहिंदा जिथे सतसंग होवे उत्थे सूक्ष्म रूहां होंदियां ने, उत्थे गुरमुख रूहां होंदियां ने जो मुक्त नहीं होईयां। जैसे 100 मील दी वाट होवे ते कोई 90 मील चले आए ते शरीर दा अंत हो गया, शरीर दी उम्र इतनी सी, 10 मील दी वाट ते रह गई, वह तो तय करनी है, तो उहदे वास्ते फिर जन्म लेना पएगा। ते जिहड़ा इतना चल चुका है वह हर मां दे राही जगत विच नहीं आना चाहता, हर पिता दे राही नहीं आना चाहता, हर मां देवते नूं जन्म नहीं दे सकती। जिहड़ी देवते नूं जन्म दे देंदी है तिन धन जने दी मां आए सफल, क्योंकि देवता पवित्र मन दा मालिक है, उहदे कोल मन है। चलो मैनूं इंज कहण देना, पशु कोल तन है विकसित मन नहीं है, देवते कोल सिर्फ मन है तन नहीं है, मनुख कोल तन भी है मन भी है। आप सारे सियाणे बैठे बुनियादी गल नूं पकड़ना, पशु कोल तन है, मनुख नालों बड़ा भारी विकसित तन है, हाथी कोल है, घोड़े कोल है, पर विकासशील मन नहीं है, सिर्फ तन। देवते कोल सिर्फ मन है, मन है, ये तन नहीं है। मनुष्य कोल ये तन भी है मन भी है। मुक्ति मनुख दे राही मिलेगी,
परमात्मा मनुख दे राही मिलेगा ना भूत प्रेत नू ना देवते नू। इस वास्ते गुरबाणी कहती इस देही को सिमरे दे, देवते भी कहते ने देही मिले ते मुक्त हो ही है। दस मील की जड़ी वाट रही है पूरी करिए, पर देवते वास्ते कोई देवी मां चाहिए। पहले चुनाव मां का, क्योंकि मां के गर्भ में उसने प्रवेश करना, मां बाप की वासना, इसकी जन्म की वासना, कि तिना का संगम बन के इसका जन्म होगा। जैसे गुलाब का बूटा बंजर जमीन च नहीं पैदा होता, देवते नो जन्म जनी खनी मां नहीं कर सकते। देवते नो जन्म देन वास्ते कोई खास मां, इसनो मिर्जा गालिब एक होर ढंग नाल बयान करता है, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। मैं फिर अर्ज करा, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। मोहब्बत असल में मखमूर वो राजे हकीकत है, समझ में आ गया है फिर भी समझाया नहीं जाता। ये संगीत हर साज ते नहीं गाया जा सकता। हर मां देवते नू जन्म नहीं दे सकते। इस संबंध च गुरबाणी च बड़ा कुछ है, मैं इस वक्त इस पासे गया तो इसे पासे ही चला जावांगा, मूल गल रह जाएगी। पंडित दया राम जी गुजरात के एक चंगे भगत होए ने, वो कहते ने प्रेम सोनीर बहे जस गावत नाचत देव चले सब अंगा। ऐ मां ऐसा पुत्र पैदा कर प्रभु दा नाम सुने अश्कबार हो जाए बिरही हिरदा रब वासे तड़प उठे रो उठे। रोंदे ने लोकी, कोई औलाद की खातर रो रहा है, कोई कारोबार की खातर रो रहा है, कोई परिवार की खातर रो रहा है, कभी कदाई कोई मिलता है रोंदा होया निरंकार की खातर, कभी कदा। प्रेम सुनीर बहे जस गावत नाचत देव चले सब अंगा। इस तरह का भगत पैदा कर, जे नहीं तो कह खग गैरण में भलीस दिन लहू सो घाव चले अरधंगा। ऐसा सूर बीर पैदा कर रणभूमि विच रोम रोम उसका जख्मी होवे पिठ फिर भी ना दिखावे, अणख उसकी बनी रहे। ते जे ए भी नहीं ते विद दोए भूत जने जननी जन आओ सवे सुत कीट पतंगा, ते फिर कीड़े मकोड़िया नो जन्म देन नाल की होना, धरती का बोझ ही बधाएंगी और की। कहन देना अजोकी औलाद, जद मैं सुनदा पांच दस मुंडिया ने एक मुंडे नू रेल तो गिरा दिता मासूम नू, पांच दस बच्चियों की इज्जत लुटन की कोशिश की बिहार दे नौजवानों ने छोटे छोटे बच्चों ने, तो कहना पै गए भूत प्रेत ने कि बंदे ने मनुख ने। इन्ने गंदियां आत्मावां किसी गंदी मां दे राही आईयां ने, यह भी मैं जिक्रां। एवें नहीं एशिया दे बैड़े पुत नूं वेख के मां नूं गाल कढ़ दे, मां नूं गाल कढ़न दे पिछे एक बहुत वड्डी सच्चाई है, ऐसी भैड़ी आत्मा नूं जन्म दिता, तेरी गोद इतनी गंदी, तेरी कुख इतनी मैली। खैर मुक्त सरस का गुरु रामदास जी का भी शब्द सामने है, जिदे आसरे ते मैं कह सकदा कि मैं गलत नहीं कह रहा, जिन हर हिरदे नाम ना वसेओ तिन मात कीजे हर बांझा तिन सुन्ने ही दे, फिरे बिन नावे ओ खप खप मोए करांजा। अवतारा नूं जो जन्म देंदी है, अवतार करोड़ां च कोई एक आउंदा है, अवतार नूं जन्म देण वाली मां भी कोई करोड़ां च एक आउंदी है। तिन जन जने दी मां आए सफल से,
इतनी बड़ी लंबी मुद्दत तक मनुखता किसी परम पुरुख नु उड़ीक लिए। खैर ये स्वतंत्र होंगे ने मुक्त रूहां, चूंकि धर्म का मूल ते दया है, संतुष्टि है। इन आत्मावां को ले सूक्ष्म शरीर संतुष्टि है, दया है। एक दफा मैं फिर दोहरा दें ताकि मजबून पकड़ दे चाह जाए। पशु कोल तन है, विकसित मन नहीं है। देवते कोल बड़ा विकासशील मन ते है, तन नहीं है। इंज कह ले उदे कोल असवार ते बड़ा सियाणा है, फुरतीला है, पर उदे कोल घोड़ा ही कोई नहीं, वाहन ही नहीं है। इंज कह ले केवल मनुख है, इदे कोल तन भी है, इदे कोल मन भी है। इस तन दी बड़ी महिमा, बड़े भाग मानुक तन पावा, बही परापत मानुक दे होरिया, गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया। इस देही दे राही ए मन तू गोविंद तक पहुंच सकता है। ये देही इतनी महान है, इस देही को सिमरे देव, देवते तरस देने। देवते सूक्ष्म शरीर है, किसी भी तकनी महान होवे, देखनी महान होवे, जिन्हों कहने दिव दृष्टि, दिव दृष्टि, देवतियां नू देखण दी दृष्टि, मनुखा ने देखण दी दृष्टि है, किसी को नहीं आती विचारे को, जिन्हों असी नेत्रहीन अंधा कह देंदे हां, कोई गल दृष्टि साडे कोल है मनुखा नू वेखण दी। पर जिहदे कोल देवते नू देखण दी दृष्टि आउंदी है उहनू कहिंदे ने इहदे कोल दिव दृष्टि है, देवतियां नू देखण दी दृष्टि है। जद कहा जांदा है जिथे रामायण दी कथा होवे उथे हनुमान बैठा हुंदा है, इह ते अतकथनी है। हनुमान जैसे प्यारे भगत जो मुक्त नहीं हो सके होणगे, हनुमान ते मुक्त हो गया, ते जे नहीं मुक्त हो गया ते इहनू इतना वड्डा संत ते उहनू पूजण दी भी फिर की लोड़ है। नहीं, उह इक मुक्त आत्मा, उन्हों विचकार लियाण दी लोड़ नहीं आउंदी। पर लियांदे ने शायद इस वास्ते लोकां च राम दी शरदा वधाई है, पर थोड़ा जिहा सोच विचार करन वाले मनुख दे अंदर ते शरदा घटेगी वधेगी नहीं। जैसा प्यार हनुमान दे अंदर सी, इस तरह दे प्यार रखण वालियां दा किधरे शरीर दा अंत हो गया, मन प्रभु तक ना पहुंच सकिया, तो ये देवते कहलांदे ने, भटकदे ने। तो देवते सिखां च भी आउंदे ने, मुसलमानां च भी आउंदे ने, हिंदुआं च भी आउंदे ने, पारसी यहूदियां जैनियां बौद्धियां च भी आउंदे ने। भटकदियां होईयां ये रूहां देवते। तुसीं आखोगे मैं कहिंदा की पिया, एक बहुत प्रबल सच्चाई है जिसनूं संसार विच उजागर बहुत घट कीता गया, बहुत घट कीता गया है ना। भरिया पिया खला कुछ भी नहीं है। कुछ मनुखां दे मंडल ने जमीन, कुछ देव मंडल ने, देवते रहिंदे ने, फिर कुछ रूहानी मंडल ने मुक्त आत्मा लीन हो चुके परमात्मा च। और वो ज्यों ज्यों सैर करे त्यों भावे, महरम मैल ना को अटकावे, सब महरम ने कोई अटक नहीं, जिथे जान जा सकते जा सकते। इस तरह दियां आत्मावां जो मुक्त नहीं हो सकियां ते देवते ने, देवते तो मुराद ज्ञानी ने, दीवा जले होया पवित्र ने, जन्म लै सकन, उस तरह दी मां मिलेगी ते होएगा। जने हर किसे मां दी गोद दे राही और जगत विच नहीं आना चाहते, तो उतने दिन तक फिर किथे रहन? ए फिर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारियां च रहिंदे ने, अपने अपने मजहब संस्कारां दे मुताबिक, अपने अपने धार्मिक केंद्रां विच रहिंदे ने, सुणदे ने, आनंद लैंदे ने। मन उहनां कोल है, तन है नहीं, भुख प्यास लगदी नहीं, भुख प्यास तन नूं लगदी है, हवा तन नूं चाहीदी, ऑक्सीजन तन नूं चाहीदा है, सूक्ष्म शरीर नूं नहीं। चूंकि तन है नहीं, तो तन दी कोई भुख प्यास नहीं, तन दी कोई लोड़ नहीं।
ਪਰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਹੈ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਜਪ ਤਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਢਾਂਚੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਲੀਨ, ਬੜਾ ਕਸਾਈ, ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਟ, ਮਹਾਨ ਠੱਗ, ਬੜਾ ਕਾਤਲ, ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਭਟਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੂਕਰ ਮਿਰਗਾ ਚ, ਸ਼ਰਾਬਖਾਨਿਆਂ ਚ, ਵੈਸ਼ਿਆਲਿਆਂ ਚ, ਹੋਰ ਗਲਾਜ਼ਤ ਭਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੂਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲੜਾਈ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਇਹ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁਕਰਮ ਵੱਡੇ ਕੁਕਰਮ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਭੂਤਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨੇਕ ਕੰਮ ਜੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਦੇਵ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਜਾਓ, ਕਬੀਰ ਕਿੱਥੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਬੈਠੇ 25 ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਆਏ, ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਰਨਾ, ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ 25 ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ 2-4 ਸਾਧੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿੱਤਰ ਸਨ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਗੱਲ ਫੈਲ ਗਈ ਸਾਰੇ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ, ਪਹੁੰਚ ਗਏ 700-800 ਸਾਧੂ। ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਵੇਖ ਕੇ ਕਬੀਰ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। 25-30 ਆਦਮੀਆਂ ਲਈ ਅੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਅਚਾਨਕ ਲਿਆ ਸਕੇ ਬਣਾ ਸਕੇ ਇਤਨੀ ਬਿਸਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਤਨੇ ਗੁਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੀ ਕਰੇ, ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭ ਡੋਰੀ ਹੱਥ ਤੁਹਾਰੇ, ਤੂੰ ਸੰਭਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਸੋਚਦਾ ਜਾਵਾਂ ਘਰ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਖੂਬ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਅੱਜ ਖੂਬ ਉਡਾਇਆ ਹੋਣਾ ਕਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਉਂ ਆਇਆ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਤਲਾਂ ਦਾ ਢੇਰ, ਇੰਝ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੋਜਨ ਛੱਕ ਗਏ। ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਆਏ ਤੇ ਦੋ ਸੱਜਣ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਕਬੀਰ, ਧੰਨ ਕਬੀਰ, ਐਸਾ ਲੰਗਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਕਸ਼ਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਧੋਤੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਦੋ ਦੋ ਮੋਹਰਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਧੰਨ ਕਬੀਰ, ਧੰਨ ਕਬੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਚਿਤ ਮਾਂ ਮਿਲੀ, ਪ੍ਰਸੰਤ ਚਿਤ ਲੋਈ ਮਿਲੀ ਪਤਨੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਹਮ ਕਰ ਕੀਆ ਨਾ ਕਰੇਂਗੇ, ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਸਰੀਰ, ਮੇਰੀ ਤੋਫੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਲੋਕ ਹੈ, ਨਾ ਹਮ ਕੀਆ ਨਾ ਕਰੇਂਗੇ, ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਕਿਆ ਜਾਣੋ ਕਿਛ ਹਰ ਕੀਆ ਭਯੋ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਕਬੀਰ, ਧੰਨ ਕਬੀਰ, ਧੰਨ ਕਬੀਰ। ਆਪਣੀ ਤੇ ਬਿਸਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਨੇਕ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਰੂਹਾਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਭੈੜਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਬੀਰ ਕੋਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਜੇ ਘਰ ਸਾਧ ਨ ਸੇਵੀਏ, ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਘਰ ਮਰਹਟ ਸਾਰ ਖੇ ਭੂਤ ਬਸੇ ਤੇ ਨ ਮਾਰ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ, ਖੈਰ ਮੁਖਤਸਰ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਮੁਕਤ ਲੋਕ ਜੋ ਪੂਰਨ ਮੁਕਤ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਵਤਾਰ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਗੰਬਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਸਾਲ
नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मनुखता दे बगीचे च कदी कदाई इस तरह का फुल आउंदा जिदे नाल मनुखता मुअत्तर हो जाए ते दुनिया दंग रह जाए। इस तरह दी आत्मावां दा आवना रोज रोज नहीं आउंदा, कीड़े मकोड़े रोज जन्म लैंदे ने। गुस्ताखी माफ। इस तरह दे फुलां दा जन्म कदी कदाई, ये अवतार कहलांदे ने, ये वासना वस हो के जन्म नहीं लैंदे। फिर किवें जन्म आउंदा इन्हां दा? हंकार वस हो के जन्म नहीं लैंदे। हंकार ते इन्हां दा मर गया, वासना ते इन्हां दी मर गई, लोभ ते इन्हां दा मर गया। शरीर दे होंदे ये सब कुछ मर गए, असीं ते जीवन मुक्त सन, फिर मुक्त हो गए शरीर दे अंत नाल, लीन हो गए पार ब्रह्म विच। फिर ये किस तरह आ गए, क्यों जन्म होया? ये दया वस हो के आ जांदे, तरस खा जांदे। जगत नूं जलदा देख के, दुखद देख के, अज्ञानता दीआं ठोकरां खांदिआं देख के तरस खा के फिर आ जांदे ने। तन दी अपनी उम्र आउंदी है जिहड़ा मिलदा है उहनां नूं, पर नहीं ज्यादा दिन तक कुछ वंडीए। गुरु नानक नूं दस तनां दा, दस शरीरां दा इस्तेमाल करना पिआ। संत बनाना है, उसे संत नूं सिपाही बनाना है, बड़ा लंबा कम पूरा करिए। मनुख नूं पूरन पुरख बनाना है, पूरा करिए। ये ढाई पौने 300 साल की अवधि, खैर मुख्तसर में अर्ज करा। दूजी श्रेणी मनुखां दी, जप जप के, साधना कर करके, अमृत वेले उठ के, सवेरे शाम सत्संग करके, हर वक्त मन नूं प्रभु पासे ला के, इसे जीवन विच मुक्ति पा ली है। इन्हां नूं कहिंदे ने भगत संत। अवतार उन्हां नूं कहिंदे ने मुक्त ते हो गए सन, फिर आ गए। उम्मीद ए गल पकड़दे चाहिए होवेगी। साधना कर करके, जप तप कर करके मुक्त हो गए ने, पहुंचे ये भी उत्थे ही ने जिथे अवतार ने। पर ये दोबारा आणगे के नहीं आणगे, इन्हां दी सोचनी ते मुनसर होवेगा। अजे भगत ने, संत ने, परम आनंद देच ने। गुरु ग्रंथ साहिब विच गुरु बाणी दे नाल नाल भगत बाणी, भगत जो भगवान तक पहुंच गए, प्रभु तक पहुंच गए, ये मुकुत ने, भगत ने, संत ने। सुरनर तिनकी बाणी गावे, कोई न सके मिटाई। जद कोई भगवान तक पहुंच जांदा है ते उहदे अंदरों भगवान दा गीत संगीत निकलदा है, भागवत गीता निकलदी है। हर भगत दे बोल भागवत गीता ने, ये भी मर्ज करदे हैं, गीत ने। नानक भाव जल पार परे जो गावे प्रभ के गीत, केड़े गीत? जो भगतां दे गीत ने, अमर गीत ने। अगर वो कोई गावे मुक्त हो सकता है, क्योंकि मुक्त पुरुषां दे बोल ने, उन्हां दे बोल ने। इह जिहड़े मुक्त पुरुष आउंदे ने, भगत लोग आउंदे ने, इन्हां नूं फिर विद्वानां ने दो हिस्सिआं च वंडिआ। एक ओ जो रोजमर्रा जगत नूं संदेश उपदेश देंदे रहे और उन्हां दे अंदरों गीत संगीत जन्म लैंदा रहा, भावें चौक दे च बैठ के जुतियां ही गणदे ने रविदास, भागवत गीता ते उन्हां दे अंदरों भी जन्म लैंदी है। भावें खड्डी ते बैठ के सारा दिन कपड़ा बुणदे ने कबीर, लेकिन भागवत गीता ते उन्हां दे अंदरों भी जन्म लैंदी है। भावें सारा दिन कपड़िया नूं रंगदे ने, छिमदे ने नाम दे, भागवत गीता ते उन्हां दे अंदरों भी जन्म लैंदी। इन्हां दे गीतां दे च भगवान आउंदा, इन्हां दे बोलां दे च भगवान आउंदा। कुछ ऐसी श्रेणी भगतां दी जिन्हां कोल शैली शब्दावली अक्षरी ज्ञान नहीं आउंदा,
प्रभु दा ज्ञान होंदा है, वो फिर नहीं बोले, नहीं बोलते, चुप रहते हैं। उन्हां दी खामोशी भी कुछ ना कुछ वंडदी रहती है, जैसे खिड़िया होया फुल उदी खामोशी भी महक वंडदी रहती, सुगंध वंडदी रहती। चूंकि इस तरह के पुरश बोलते नहीं, कुछ लिखते नहीं, कहते नहीं, तो समाज के जमीन के उत्ते उसके कदमों के निशान नहीं बनते। यह भी मैं सकता, ये भगत दूजी श्रेणी। एक तीजी श्रेणी मैं हुणे अर्ज कीती है, धार्मिक विद्वान पुरुषां ने मनुखां नूं पंज हिस्सिआं च वंडिआ है, ते हुण गिणती तुसीं अपनी कर लेना, इन्हां पंजां दे च असीं किहड़ी श्रेणी च आंदे हां। तीजी श्रेणी परमात्मा ते श्रद्धा भी है ते शक भी है, मन मनदा भी है मन इनकारी भी है। मन ओही कुछ मनदा जो मन दे अनुकूल है, मन उस नू इनकार करदा है जो मन दे अनुकूल नहीं। श्रद्धा भी है शक भी है। ई श्रेणी सब तो ज्यादा है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे करीबन करीबन बहुते इन्हां नाल ही भरे हुए ने। गुस्ताखी मां श्रद्धा भी है शक भी है, गुरु नूं मथा भी टेकना है, गुरु की गल भी नहीं मननी, गुरुद्वारे भी आना है, गुरु नाल जुड़ना नहीं है। श्रद्धा भी है शक भी है। इनू मैं इस तरह बयान करदा हुंदा, कोई एक कदम अगे चले एक कदम पिछे चले, एक कदम अगे चले एक कदम पिछे, सारा दिन इस तरह चले तो कित्थे पहुंचेगा, किधरे पहुंचेगा। मेरिया इन अखां ने देखिया 40-40 साल तो जिहड़े गुरुद्वारे आ रहे ने, 40 साल पहले भी क्रोधी सन, अज भी क्रोधी ने। 40 साल पहले भी प्रबल लोभ नाल भरे हुए सन, अज भी लोभ नाल भरे। 40 साल पहले भी हंकारी सन, अज भी हंकारी ने। 40 साल पहले भी भिकारी सन, अज भी भिकारी ने। कुछ भी चले भी बहुत ने, थके भी बहुत ने, टूटे भी बहुत ने, पहुंचे क्यों नहीं। एक कदम अगे एक कदम पिछे, एक कदम अगे एक कदम पिछे। दान पुन भी कर लिया, पाप भी कर लिया, ईमान भी प्रगट किया, बेईमानी भी कर ली, सच भी बोल लिया, झूठ भी बोल लिया, हाथ च गुटका रख के पाठ भी कर लिया, गंदे गीत भी अलाप लिया। श्रद्धा भी है शक भी है, एक कदम अगे एक कदम पिछे। ये तादाद सब तो ज्यादा है, सब तो ज्यादा। इस तादाद दे चां कुछ लोग धार्मिक किरत अपना लेंदे ने, कथा कीर्तन मौलवी बन गया, कोई फादर बन गया, कोई गुणी ज्ञानी बन गया, कोई पंडित महाराज बन गया। हुण परमात्मा नूं जाणिया ते है नहीं, जाणिया ते कख नहीं, जाणन दी कोशिश पै करदे, समझिया ते कुछ भी नहीं, समझाण दी कोशिश पै करदे, खुद नहीं समझे। अपना ही मन जिस गल नूं नहीं मनदा पिया, ओही जगत नूं मनाना चाहते हैं। गुरु नानक कहिंदे ने खेड नहीं बनेगी, प्रथमे मन पर बोधे अपना पाछे अवर ले जावे। ये खेड इंज नहीं बनेगी। ये तीजी श्रेणी है, श्रद्धा भी है शक भी है, शक भी है श्रद्धा भी है। इस वास्ते दान पुन भी है, बेईमानी भी है, सेवा भी है, कठोरता भी है, बाणी का जपतप भी है, झूठ बोलना भी है, अनर्थ भी है, श्रद्धा भी है शक भी है। ये तीजी श्रेणी है। चौथी श्रेणी श्रद्धा बिल्कुल नहीं है, ही नहीं। ऐलानिया कहते हैं कोई परमात्मा नहीं, कोई ईश्वर नहीं, साडा की गुरुद्वारे नाल मतलब। अजोके नौजवान कई मिलदे मैं ते सुन के हैरान होना, मन अपना चंगा होना चाहिए, की लोड़ है गुरुद्वारे जाण दी। जिवें मन दा चंगा होना बच्चियां दा खेल है, खिडौणियां दी खेड है। दिन रात साधन करन वाले बिचारे अपने मन नूं शुद्ध नहीं कर पाते। मन चंगा होना चाहिए,
मन शुद्ध होना चाहिए। इस तो गल स्पष्ट हो गई, अजे इन्हों विचारियों मन का नहीं पता, सिर्फ तन का ही पता, अजे सिर्फ तन की भज दौड़ है, अजे सिर्फ तन दियां लोड़ां दी चिंता है, अजे इन्हों मन का कुछ भी नहीं पता जो इस तरह कह रहे हैं। जब कभी मन नूं देखणगे तो पता चलेगा असलियां समस्यावां ते मन दे च नै, चिंता ते मन दे च, भय ते मन दे च, विरोध ते मन दे च, प्रबल वासना ते मन दे च, प्रबल अहंकार ते मन दे च। ये मन मनुख कोल बड़े अनर्थ कराएगा, बहुत अनर्थ कराएगा। नास्तिक साडी कोई आस्था नहीं, साडा कोई भरोसा नहीं। अजोकी नौजवान पीढ़ी ते यही बहुत ज्यादा सवार है, यह भी मैं जोर। और कम्युनिस्ट कहते हैं, पता है की आखते हैं, भोजन की लोड़ है, भजन की लोड़ नहीं है, धन की लोड़ है, धर्म की लोड़ नहीं है, पानी चाहिए स्वच्छ, गुरबाणी नूं की करना है, कम्युनिस्ट ऐलानिया कहते हैं। और दलील देते हैं, चार दिन पानी ना मिलिया पंजवें दिन मौत हो जाएगी। सारी जिंदगी भी मैं गुरबाणी ना पढ़ा तो की होना है, की घटता है, कुछ भी नहीं घटता, इंज कहते हैं।

हस्त खेलत तेरे देहरे आया, भगत करत नामा पकड़ उठाया। मंदिर देच भक्ति करदिया प्रभु दे गीत गाउंदिया क्यों उठाए गए, क्यों बाहर कड्डे गए? क्योंकि शूद्र जाति दे सन, ते शूद्र जाति लई मंदिरां दा प्रवेश बंद सी। आप स्वयं कहंदे ने, हस्त खलित तेरे देहुरे आया, भगत करत नामा पकड़ उठाया। हीनड़ी जात मेरी जाद मराया, छीपे के जन्म मुको काहे को आया। भक्ति भाव विच भिजे गीत आप जुगारे सन, ते मंदरां विच जो कथा कीर्तन होंदा सी उस दे जो सुनन दा आप दे अंदर शौक सी, लेकिन ब्राह्मणा दा जो व्यवहार सी उस तो दुख तो के आप कहंदे ने, छीपे के जन्म मोको काहे को आया। हे प्रभु, तू छीबे दे घर मैनू जन्म क्यों दिता? क्योंकि भक्ति करन दा अख्तियार लोकी मैनू नहीं देंदे, मंदरां दे चों तक्के मार के कढ़दे ने। ले कमली चलियो पलटाए, देहुरे पाछे बैठा जाए। आखिर अपना चदरा विछा के जिस दे उत्ते बैठा होया सी उन्नू संभाल के समेट के मंदिर दे पिछवाड़े जा बैठा। आप दा ही वाक है, ज्यों ज्यों नामा हर गुण उचरे, भगत जना का देहुरा फिरे। जैसे जैसे वो प्रभु दे गीत गाउंदे ने, प्रभु विचलीन होंदे ने, वैसे वैसे मंदिर फिरदा है। और मंदिर दा जो मुख द्वार सी उस दा मुंह नामदेव जी दी तरफ हो गया, मूर्तियां दा मुंह नामदेव जी दी तरफ हो गया, और पंडियां दी तरफ पिछवाड़ ला। फेर दिया नामे को देहुरा, पंडियन को पिछवाड़ ला। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा भी फरमान है, हंकारियां निंदका पिठ दे, नाम देव मुख लाया। ए मंदिर गौंडा देच अज भी मौजूद है, श्री सचखंड हजूर साहब तो गालबन 40 मील दी दूरी दे औरंगाबाद रोड देते। ए गौंडा नाम दा बहुत वड्डा तीर्थ है। इस औंडा नाम दे तीर्थ दे उत्ते ही श्री नामदेव जी महाराज ने ए प्रभु दे गीत गाए, ते आप नू तके मार के बाहर कढ़िया गया। ए मंदिर इतिहासक मंदिर है और कस्बे दा ना औंडा है। महाराष्ट्र दे च बेशुमार तीर्थां दे चों ए अस्थान भी तीर्थ सतल करके बहुत मशहूर है। और श्री नामदेव जी महाराज दा भी अस्थान इस मंदिर दे च अज बनया है। भावे आप शरीरक रूप दे जद मौजूद सन ता आप नू धक्के मार के बाहर कढ़िया गया, लेकिन अज उन्हां दी मूर्ति मंदिर दे द्वार तो बाहर स्थापन कीती हुई है। और दूरों ही पुजारी आवाज मार देन, संत नामदेव दे दर्शन करो, संत नामदेव दे दर्शन करो। लेकिन ए अजूबा पृथ्वी ते मौजूद है कि मूर्तियां दा मुंह एक पासे है, मंदिर दा मुंह दूसरे पासे है। और ए अजूबा कहंदे ने श्री नामदेव जी महाराज करके होया, क्योंकि आप नु जब धक्के मार के बाहर कढ़िया गया, आप पीछे जा बैठे तो मूर्तियां ने भी रुख नामदेव दी तरफ ही कर लिया। खैर महाराष्ट्र दे भ्रमण करदे हां, प्रभु गीत गाउंदे हां, आप मनुखता लई एक पवित्र माहौल बना रहे सन। दरअसल भगत दा होना ही वातावरण दा पवित्र होना है। ओदे शरीर दे चों जो लहरां निकलदियां ने, तिरंगा निकलदियां ने, ओ आस पास दे माहौल नूं पवित्र करदियां ने। जैसे कि भगत कबीर दा कहना है, कबीर सो मुख धन है, जय मुख कहिए राम, देही किसकी बापरी, पवित्र होए गो ग्राम। देही दा ते कहना कि एक सुरत होके जो प्रभु गीत उचारण करने ने, प्रभु सिमरन करना है, ओदे नाल ते सारा नगर पवित्र हो जांदा है, सारा शहर पवित्र हो जांदा है। तो नामदेव ने थां थां ते महाराष्ट्र विच भ्रमण करना आरंभ कीता। इस तो बाद आपने समस्त भारत दा वी रटन कीता। दिल्ली दे जद आप आए ते आप दे
भगती भाव दे संगीत ने जद श्रोतियां दे मना ते अपना प्रभाव पाया ते आप दे आले दुआले बहुती भीड़ इकट्ठी हुई ता ओ पुराना झगड़ा शुरू हो गया जिन्हों कहिंदे ने सत ते सता दा झगड़ा। वक्त दे सुल्तान सिकंदर लोधी नूं इह गल रास नहीं आई कि एक व्यक्ति दे पिछे इतनी भीड़ इतना इकट्ठ इस तों सताधारी कई दफा खतरा महसूस करते ने कि एक व्यक्ति दे पिछे इतनी भीड़ क्यों है ते ए भीड़ किसे वक्त साडे लई दुखदाई साबित ना होवे। लिहाजा श्री नामदेव जी महाराज नूं पकड़ के हिरासत दे च लै लिया गया और सुल्तान ने कहा कि मेरे घर दी कपिला गऊ मर गई है, इस नूं तू अपनी शक्ति नाल जिवा दे ते तैनूं छड्डांगा वरना नहीं। तो नामदेव जी महाराज कहिंदे ने इह जन्म ते मरण प्रभु दे हत्थ च है, हमरा किया कछु न होए कर है राम होए है सोए। इह जन्म ते मरण राम दे हत्थ दे च है न के मेरे हत्थ दे च है। सुल्तान क्रोध दे च आया गुस्से दे च आया और जेल दे च नामदेव जी महाराज नूं बंद कर दिता गया। दहली दे पतवंतिया ने आखिर सोचिया कि कीमती इंसान है भगत है और ऐसा ना होवे कि राज हट दे सामने इस दी कीमती जान चली जाए, तो सारे पतवंते सुल्तान नूं समझान लई गए। जद भी कदी राज हट ते भगती दा हट आपस दे च टकरांदा है तो वाकई राज हट लई एक कयामत ही नाजल होंदी है। ऐसा आदकाल तो चले आ रहे भगत हट करदा है अपनी सच्चाई ते पर सताधारी हट करदा है अपनी सता ते अपनी झूठ ते। जैसे कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भी कहंदे ने तुरा तर्क ताजी ब मकरो राया मरा चारा साजी ब सिदको सफा। मैं सिदक ते खड़ा सच्चाई ते खड़ा सफाई ते खड़ा ऐ सुल्तान तू झूठ ते खड़ा है फरेब ते खड़ा है फरेब ते खड़ा तू इस तों अगां पिछा नहीं होना चाहता है तेरा हट है पर सच ते मैं खड़ा मैं भी इधर उधर नहीं होना चाहता ये मेरा हट है। सत ते सताधारियां दी आद काल तो ही नहीं बने सताधारी सतवादियां दे गुण उन्हां दे आले दुआले श्रद्धालुआं दी भीड़ नूं वेख के औखे हुंदे रहिणे ते सतवादी सताधारियां दे झूठ नाल कदी सहमत नहीं हुंदे रहे तो नामदेव भी सहमत ना होवे। सुल्तान ने कह दिता नामदेव नूं करड़ी तों करड़ी सजा देंगे। लेकिन जब दिल्ली दे पतवंते सुल्तान दे कोल पहुंचे ते कहन लगे एक कीमती मनुख है इस दी होंद मनुखता दी तामीर विच सहायक होंदी है मददगार होंदी है ये ते चंदन दा वृक्ष है चलदा फिरदा खुशबुआ वंडदा है शीतलता वंडदा है इनू छोड़ दो। सुल्तान कहंदे ने मैं किसे कीमत ते भी नहीं छड़ना एक कोई शर्त है मोई हुई गऊ ए जवा देवे। पर मोई हुई गऊ नू जवान तो नामदेव ने इनकार कीता है। दिल्ली दे धनाढ़ सेठा ने भगता ने आखिर सुल्तान नू कहा कि नामदेव दे शरीर दा जो वजन है इतने वजन दा साडे कोल सोना ले लो चांदी ले लो नामदेव नू छड़ दो। ता सुल्तान कहिंदा माल लौ ता दोजक भरो मैं दोजकां दे च नहीं जाना मैं धन माल लेके इस काफर नू नहीं छड़ना। तो सारे पतवंते हाथ जोड़ के सुल्तान नू कहंदे ने मोई होई गऊ नामदेव नहीं जवाना चाहते धन माल तुसी नहीं लेना चाहते तां कोई तीसरा तरीसा कड्डो कोई तीसरा मार्ग कड्डो ताकि नामदेव दी बंद खलासी हो सके। ता तीसरा तीका सुल्तान ने कहा एक कोई है ए राम कहना छड़ देवे ए खुदा खुदा दा रटन करे। नामदेव नू जदे गल आखी गई त
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਠ ਤੇ ਕਾਇਮ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਰਮਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਵੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਛੋੜ ਰਾਮ ਕੀਨਾ ਭਜੇ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਛੱਡ ਜਾਨ ਬਚਦੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ। ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਧੁਨੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਗੀਤ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਰਾਮ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਤੂੰ ਐਸੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਐਸਾ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੰਧ ਲੇ ਕੀ ਟੇਕ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਖੁੰਦ ਕਾਰਾ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਮੈਂ ਮਸਕੀਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਧਾਰਾ, ਕਰੀ ਮਾਂ ਰਹੀ ਮਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤੂੰ ਗਣੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਕਰੀ ਮਾਂ ਰਹੀ ਮਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤੂੰ ਗਣੀ, ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਰਪੇਸ਼ ਤੋ ਮਨੀ, ਦਰਿਆਓ ਤੂੰ ਦਹਿੰਦ ਤੂੰ ਬਿਸਿਆਰ ਤੂੰ ਧਨੀ, ਦੇਹ ਲੇਹ ਏਕ ਤੂੰ ਦਿਗਰ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਦਾਨਾ ਤੂੰ ਬੀਨਾ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕਿਆ ਕਰੀ, ਨਾਮੇ ਚੇ ਸੁਆਮੀ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਤੋਂ ਹਰੀ। ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ ਇਸਲਾਮੀ ਨੇ, ਕਰੀ ਮਾਂ ਰਹੀ ਮਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤੂੰ ਬਣੀ, ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਰਪੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਨੀ। ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਇਸਲਾਮੀ ਨੇ, ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਧੁਨ ਰਟਦਾ, ਕਈ ਦਫਾ ਕਰੀਮ ਕਰੀਮ ਰਹੀਮ ਰਹੀਮ ਕਰਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦੇ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੋ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜਦ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਦੇ ਚ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ਦੇ ਚ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਆਖਾਂਗਾ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਚ, ਜੇ ਅੱਜ ਆਖਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜਬਰ ਹੇਠ, ਅੱਜ ਆਖਾਂਗਾ ਤਾਂ ਦਬਾਅ ਹੇਠ, ਤੋ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਮ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਾਂਗਾ, ਮੌਜ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮਸਤੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਤ ਘੜੀ ਜਬ ਬੀਤੀ ਸੁਣੀ ਅਜੂ ਨਾ ਆਏ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਧਨੀ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਛੋੜਦਾ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਨਕਾ ਜੈਕਾਰ ਕਰਾਈ, ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਦਫਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਈ ਹੋਈ ਗਊ ਉੱਠ ਖੜੋਈ, ਔਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਸੂਲ ਪੈ ਗਏ, ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇੱਧਰ ਮੋਈ ਹੋਈ ਗਊ ਜਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਈ ਇਸ ਕਰਾਮਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚ ਅਥਾਹ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਇਆ, ਪਛਤਾਵਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਆ ਕੇ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਕਦਮ ਬੋਸੀ ਕੀਤੀ, ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਤਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜਾ। ਹਰ ਯੁਗ ਦੇ ਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਜਾ ਈਸ਼ਵਰ ਆਪ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਰਮਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਰ ਵਾਪਸ ਪੰਡਰਪੁਰ ਆਏ। ਪੰਡਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਨਾਲ ਉਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋਇਆ ਜੋ ਔਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਪੰਡਰਪੁਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਛੀਂਬਾ ਨੇ, ਔਰ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੰਭ ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗਣਾ, ਇਹ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸੀ, ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ ਧੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਦੇ ਗੀਤ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਖਿਲੇਰੇ ਕਿ ਪੰਡਰਪੁਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਆਪ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਤਾਰਕਿਕ
पुरोहित लोगों ने विद्वाना ने आप तो पूछया कि तुसी अपना हिरदा प्रभु नाल किवें जोड़े की युक्ति है की युक्ति है आखिर ढंग की वर्त है तौर तरीका की वर्त है तौर तरीका कबीर तो भी किसी वक्त पूछया गया सी ता आपने साफ कह दिता सी तज भरम करम बिद निखेद राम नाम ले ही गुरु प्रसाद जन कबीर राम कर सने बिद निखेद बिधि निषेध कोई विधि नहीं है कोई ढंग नहीं है कबीर कहते हैं कोई ढंग नहीं है भरे आया ठंडा पानी दा गिलास मनुख दे अगों रख दे गए ते ओ पीण दा ढंग पुछे विधि विधान पुछे के पीण दा ढंग की है विधि की है तो गल स्पष्ट हो गई कि इस बंदे नूं प्यास नहीं लगी। 36 प्रकार दा भोजन परोस के किसे मनुख दे अगों रख दे गए ते ओ ए आखे कि छकण दा ढंग की है भोजन करन दा ढंग की है ते गल स्पष्ट हो गई इसनूं भुख नहीं लगी भूखे खावत लाज ना आवे भुखा मनुख ढंग नहीं पुछदा हुंदा तौर तरीका नहीं पुछदा हुंदा ओ छकण लग पैंदा खाण लग पैंदा ढंग तौर तरीके दा पुछना ही इस गल दा सबूत है कि इसनूं भुख नहीं लगी। श्री नामदेव जी महाराज तो ए पुछ कीती गई ढंग की है तौर तरीका की है। कबीर कहिंदे जद मनुख दे अंदर सत्संग करदे आ प्यास पैदा होंदी है भुख पैदा होंदी है ते भुख पैदा होंदे ही ओ ईश्वर दे गीत अलापन लग पैंदा है ओ ईश्वर दा नाम उचारण करन लग पैंदा है जैसे भुख लगे ते बच्चा रोण लग पैंदा है सत्संग विच बैठदियां बैठदियां जद सत दी भुख पैदा होंदी है ते रसना अपने आप ही सतनाम उचारण करन लग पैंदी है। तरीका आपदे कोल पुछया गया दसो नाम देव तुसी अपना हिरदा परमात्मा नाल किवें जोड़े है आखिर एक नियम है कि दोहां नूं जोड़न लई तीसरे दी लोड़ पैंदी है दो इट्टां नूं जोड़ना है गारा चाहीदा है दो कागज जोड़ने ने गोंद चाहीदी है दो कपड़ियां नूं जोड़ना है सुई धागा चाहीदा है दो लकड़ां नूं जोड़ना है सरेस चाहीदी है तुसी अपना हिरदा प्रभु नाल जोड़िया है किवें जोड़िया है तो आपदा गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे च बड़ा कीमती वाक है कि सोए ने की सोई रुपए का धागा नामे का चित हरसों लागा नाम देव ने अपना चित हरी नाल जोड़ लिया किवें जोड़िया है किस तरह जोड़िया है सुई धागे नाल सी लिया सुई केड़ी सोने दी तागा केड़ा चांदी दा सोईने की सुई रुपए का धागा नामे का चित हरसों लागा सोने दी सुई की है गुरु दा शब्द गुरु दा मन मंत्र गुरमन मंत्र ए सोने दी सुई है तागा की है उदिच ध्यान जोड़ना उदिच सुरत जोड़नी ए तागा है जैसे वाहेगुरु दा उचारण करिए इते सोने दी सोई है पर इदे च ध्यान जोड़िए ए धागा है ते ध्यान दे नाल ही मनुख सुन सकेगा उंज सुन भी नहीं सकेगा जैसे कि उच्ची उच्ची बोल रहा हुंदा है दूसरा सुन रहा हुंदा है ते सुनन वाला अचनचेत कह देंदा है मित्रा ए गल फिर आखो नहीं सुनी क्यों नहीं सुनी कहिंदा मेरा ध्यान किसे होर पासे चला गया तो ध्यान धागा है इसनु गुरु नानक देव जी महाराज इंज कहंदे ने धुन में ध्यान ध्यान में जानिया गुरुमुख अकथ कहानी तो गुरु दा जो मंत्र है इस सोयने दी सोई है और इस दे विच जो मैं अपनी सुरत जोड़ी है ध्यान जोड़े है ए धागा है सुई चलदी रही धागा नाल चलदा रहा मेरा हिरदा प्रभु दे नाल सिलदा गया जुड़दा गया। आम जगत विच देखण विच आया कि मनुखां कोल सुई ते है धागा नहीं राम राम रटन कर रहे ने ध्यान नहीं है वाहेगुरु दा उच्चारण कर रहे ने ध्यान नहीं है तो सोने दी सुई ते चल रही है धागा नहीं है बिन धागे बिन सुई आनी धागे तो बिना सुई की करे किस तरह सीवेगी किस तरह जोड़ेगी
तो धुन देच ध्यान दा जोड़ना, शब्द देच सुरत दा जोड़ना, मंत्र देच ध्यान दा जोड़ना, इंज है जैसे सुई देच तागा जो है परोरना। इस ढंग नाल जद सुई चलदी है ते नाल तागा चलदा है, मनुख दा हिरदा प्रभु नाल जुड़ जांदा है। यही आप कह रहे ने, सोई ने की सुई, रुपे का धागा, नामे का चित हर सौ लागा। हरी नाल चित जुड़ गया ते हरी ते आनंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप नाल जुड़दे ही आनंदमयी अवस्था मनुख दी बन जांदी है। गुरु अर्जन देव जी महाराज दा भी फरमान है, चित्ते चित मिलाए ता होवे रंग घना। परमात्मा दे चित नाल तू अपना चित जोड़, अथा रंग बनेगा, अथा सुख बनेगा। क्यों के मित का चित अनूप सो मरम न जाने। परमात्मा दा चित अति सुंदर है, आनंदमयी है, रहस्यमयी है, गुण निधान है। प्रभु दा ऐसा चित जेदे सारे गुण ने, सारा आनंद है, सारिया सुगंधिया ने, सारा खेड़ा है, सारा स्वप्न है। जैसे कोई प्रभु दे चित नाल अपना चित जोड़दा है, जगत दी सारी स्वप्न नाल उसने अपना चित जोड़िया, जगत दे सारे संगीत नाल उसने अपना चित जोड़िया। जैसे उस परम संगीत दे नाल ते परम स्वप्न दे नाल चित जुड़दा है, मनुख दे अंदर भी परम स्वप्न ते संगीत दा जन्म होंदा है। मित का चित अनूप सो मरम न जानई, गाहक गुनी अपार सो तत पछानई। चित्ते चित मिलाए ता होवे रंग घना, हरहा चंचल चोरे मार ता पावे सुख घना। चूंकि परमात्मा दे चित दे परम नाद है, परम संगीत है, उस नाल जुड़दे हां, परम संगीत दियां धुनियां मनुख दे अंदर वजनियां शुरू हो जांदियां। उस दा जिक्र श्री नाम देव जी महाराज अपनी बाणी च इंज करदे ने, अणमणिया मंदल बाजे, बिन सावन घनहर गाजे, बादल बिन बरखा होई, जो तत बिचारे कोई। मेरे अंदर एक ढोल वज रहा है, नामदेव कहंदे ने, लेकिन वह चमड़े का मड़िया होया नहीं है, पर वज रहा है, अठे पैर वज रहे है, बड़े सुर दे च वज रहे है, बड़े ताल दे च वज रहे है। अणमड़िया मंदल बाजे, अज तक दे तमाम सिरमोर भगतों ने ऐसा आख्या है कि साडे अंदर संगीत की धुन चल रही है, राग की धुन चल रही है, ते राग दे जन्मदाते भी संत लोग ने, भगत लोग ने। दरअसल परमात्मा की है परम सुंदरता और परम संगीत, परम रस, परम आनंद। परमात्मा नाल जुड़ना परम आनंद नाल जुड़ना है, परम संगीत नाल जुड़ना है, महान स्वप्न नाल जुड़ना है। ये ठीक है कि प्राण पुराने समय दे वैदिक ऋषियां ने भी जो ईश्वर दे गुण मने ने इस ढंग नाल मने ने, सत्यम शिवम सुंदरम, वो सत है, शिवम वो प्रकाशमान है, सुंदरम वो अति सुंदर है। सत चित आनंद वो सत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। सत सुहान सदा मन चाओ, गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने, वो सत है सुहान, वो अति सुंदर है। सदा मन चाओ वो सदी भी खिड़िया है, उसदे चित दे सुंदरता है, दैवी गुणा दी स्वप्न है, परम संगीत है। तो परमात्मा नाल जैसे कोई जुड़दा है, परम संगीत नाल जुड़दा है, परम स्वप्न नाल जुड़दा है, परम आनंद नाल जुड़दा है। इस वास्ते नामदेव जी महाराज कहंदे ने कि मेरे अंदर परम आनंद दी छाप लगी है और मेरे अंदर दैवी गुणा दी परम सुंदरता प्रगट हुई है। आप ते साफ कहंदे ने, प्रण में नाम देव ना के बिना ना सोहे बत्ती लखणा। शरीरक तल ते अगर सुंदरता दे बत्ती लखण भी मनुख दे कोल आवन, पर दैवी सुंदरता, दैवी गुणा दा जो स्वप्न है, ए बंदे कोल ना होवे तो 32 लक्षण भी किसे काम दे रहे। कहो कबीर जैसे सुंदर स्वरूप, नाम बिना सब कुबज करूप। भावे कितना ही सुंदर होवे, अत सुंदर कुलीन चतुर, मुख ज्ञानी धनवंत, मृतक कहिए नानका, जे प्रीत नहीं भगवंत। तो नामदेव जी महाराज कहंदे ने, मेरे अंदर परम स्वप्न पैदा होया और परम आनंद पैदा होया, ते परम संगीत दियां धुनियां मेरे अंदर पैदा हो गई ने, नाद वज रहा है। अणमणिया मंदल बाजे, बिन सावन घन हर गाजे, बिना सावन तो
میرے اندر بدل گرجدے پینے ہیں، کبیر امبر گھن ہر چھایا، برخ برے سرتال، چاترک جیوں ترست رہے، تن کو کون حوال، گرو روپی بدل میرے اندر گرج رہے ہیں، پرماتما دا گرجن شروع ہے، اور امرت نام دی برکھا میرے ہردے تے ہو رہی ہے، پرم سنگیت پرم ناد میرے اندر چھڑے ہویا ہے، اور اتھوں گل سپشٹ ہو گئی، پربھو نال جڑنا، پرم سنگیت نال جڑنا ہے، پرم ہریاول نال جڑنا ہے، پرم آنند نال جڑنا ہے، پرم سوپن نال جڑنا ہے۔ श्री नामदेव जी महाराज के अंदर भावना प्रधान है। दरअसल भगत नामदेव जी महाराज भावना प्रधान पुरुष ने, ते जिथे भावना प्रधान है, जज्बे प्रधान ने, बस उही भगत है। दो तरह के मनुख ने, कोई अकल दे तल ते जीवंदा है, कोई हिरदे दे तल ते जीवंदा है, कोई बौद्धिक तल ते जीवंदा है, कोई दिल दे तल ते जीवंदा है। जीवन दे ए दो ढंग ने। जो बौद्धिक तल ते जी रहा है उस दे अंदर विचार प्रधान होवेगी, जो हिरदे दे तल ते जी रहा है उत्थे भाव प्रधान होवेगा, पर जो ना बौद्धिक तल ते जी रहा है ते ना हिरदे दे तल ते जी रहा है वह मनुष्य ही नहीं है, वह पशु है। पशु इन्हां दोहां थलां तो थले ही जीवंदा है। इत्थे प्रश्न खड़ा होंदा है, भाव प्रधान है कि विचार प्रधान है। दरअसल विचार नाल वस्तु नु समझना है, हस्ती नु समझना है, और भाव नाल हस्ती नाल जुड़ना है, वस्तु नाल जुड़ना है। अगर भाव ना होए तो जुड़ नहीं सकांगे, विचार ना होए तो समझ नहीं सकांगे। जन्म तो मनुख भाव ही लेके आंदा है। इस तो एक गल स्पष्ट हो गई कि विचार नालों भाव की आवश्यकता ज्यादा है, अधिक है। भाव प्रथम है, विचार बाद देच है। भाव करके एक मासूम बच्चा मां नाल संबंध जोड़दा है, पिता नाल संबंध जोड़दा है, भैणा नाल संबंध जोड़दा है, भरावां नाल संबंध जोड़दा है। अजे ते विचार की दुनिया उत्थे आरंभ ही नहीं हुई, अजे ते भाव की दुनिया। कहिंदे ने परमात्मा नू समझण दे विच ही ज्ञानियां दा समा लंघ जांदा है, और फिर भी पूरा समझना उस नू कठिन है। थोड़ा जिहा जो तू समझे उहनू हुण अपनी जिंदगी दे विच प्रयोग दे विच लिया, तो हुण जज्बा पैदा कर, भाव पैदा कर, श्रद्धा पैदा कर, ते उस नाल जुड़। जितना भी तू विचारेगा, विचारां दी पहुंच उस प्रभु तक नहीं होवेगी। थोड़ी बहुत जो विचार दे नहीं तेनु झलक मिली है, तो हुण जुड़न दी कोशिश कर, पर विचारां दी दुनिया जो बहुत अगे लंघ जाए, महान दार्शनिक हो जाए, महान फिलोसफर हो जाए, तो फिर उस लई जज्बियां नु पैदा करना बहुत कठिन हो जाता है। उर्दू दे अजीम शायर इकबाल दा ऐसा कहना है, तेरे सीने में दम है दिल नहीं है, तेरा दम गर्म ये महफिल नहीं है, निकल जा अकल से आगे के ये नूर चिरागे राह है मंजिल नहीं है। ए बंदे अकल दी दुनिया तो अगे लंग जा, जज्बियां दी दुनिया च पहुंच, वलवलियां दी दुनिया च पहुंच, भावना दी दुनिया च पहुंच, जे तू कोई रस लेना है, स्वाद लेना है, आनंद लेना है। हकीकत है अकल ते रस्ते दा दीवा है, अकल ते रस्ते दा चानना है, ते हुन दीवे दी ही कोई परिक्रमा करदा रह जाए ते मंजिले मकसूद तक पहुंचना कठिन हो जाएगा। आम आख्या जांदा है, कई दफा अंधी श्रद्धा वाला भी भटकदा भटकदा पहुंच जांदा है, पर कई दफा विचारां दी परिक्रमा करन वाला विचारां दे च ही फसा रह जांदा है, और ईश्वर तक पहुंचना उस लई औखा हो जांदा है। विचारक अपने विचारां दे च ही कई दफा उलझ के जो है रह जांदा है। हजारों साल फिलोसफी की तना तनी रही, खुदा की बात जहां पे थी वहीं पे रही। आखिरे कितना भी खपिए, कितना भी विचारीए, ता भी विचारदियां विचारदियां पता चलदा है कि जिथों असी शुरू होई सी उत्थे ही खड़े, एक कदम भी अगे नहीं वधे। विचार विचार के जद ऐसा पता चले कि ओ साडे विचारां च नहीं आउंदा, ओ साडी सोच मंडल दे च नहीं आउंदा, ओ साडी बौद्धिक पकड़ दे च नहीं आउंदा, बस उसे क्षण चाहिदा है
ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇ, ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇ। ਤੋ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਔਰ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਭਾਵ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪ ਤੜਪ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੋਹੇ ਲਾਗਤੀ ਤਾਲਾ ਬੇਲੀ, ਬਛਰੇ ਬਿਨ ਗਾਏ ਅਕੇਲੀ, ਪਾਨੀਆਂ ਬਿਨ ਮੀਨ ਤਲਫੇ, ਤਿਉਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਬਾਪਰੋ ਨਾਮਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੜਪਦਾ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਵਿਛੋੜੇ ਚ ਇੰਜ, ਜੈਸੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੱਛਲੀ ਤੜਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਗਊ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਸਦਾ ਬਛੜਾ ਉਹ ਤੜਪਦਾ ਹੈ, ਵਿਆਕੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਚੀ ਧੁਨ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦ ਵੀ ਰੰਜਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਛੀਣ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੁੱਝਣਾ, ਬਸ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੜਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਅਧਿਕਤਾ, ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਅਧਿਕਤਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਅਧਿਕਤਾ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਰਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਘਟੀ, ਭਾਵਨਾ ਘਟੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਘਟਿਆ, ਰਸ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਰਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਰਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਰਸ ਤੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਣੇਗਾ ਜੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਕਥਾ ਨਾਲ, ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾ ਜੋੜੀਏ, ਸ਼ਰਧਾ ਜੋੜੀਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਜੋੜੀਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਸ ਦੀ ਗੰਗਾ ਵਗ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਨੀ ਚਾਖਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਸੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹੇ ਆਗਾਏ। ਬੌਧਕ ਤਲ ਤੇ ਜੀਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਅਕਸਰ ਗਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਦਾ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਬੌਧਕ ਤਲ ਤੇ ਜੀਵਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਅਕਸਰ ਵਪਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਸਮਝ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੌਧਕ ਤਲ ਤੇ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸੰਤ ਭਗਤ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹਿਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਪਾਰੀ, ਆਮ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਬੰਦਾ ਬੌਧਕ ਤਲ ਤੇ ਜੀਵਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀਵਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਗਰਜ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਧੁੰਦਲਾ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਜ ਤੜਪਦਾ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਵਿਛੋੜੇ ਚ, ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਪ੍ਰੇਮ ਮੱਧਮ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਸ਼ਰਧਾ ਛੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿਧਰੇ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿਧਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਰਸ ਆਨੰਦ ਔਰ ਸਕੂਨ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਤੜਪਣਾ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੋਹੇ ਲਾਗਤੀ ਤਾਲਾ ਬੇਲੀ, ਬਛਰੇ ਬਿਨ ਗਾਏ ਅਕੇਲੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵਪੂਰਵ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਿਰਫ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਨੇ। ਐਸਾ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਭਗਤ ਵਿਚਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਤਨ ਵਲੇਵੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਬੋਧ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜੈਸੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਭਾਵ ਕਰਕੇ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਤੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੂਝ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਫਿਲਾਸਫਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੂਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ ਜਿਤਨੀ ਕਿ ਭਗਤ ਕੋਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਭਗਤ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿਤਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਭਗਤ ਨੇ ਤੇ ਰਸ ਮਾਣਿਆ, ਭਗਤ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਭਗਤ ਸਿਰਮੌਰ
श्री रविदास जी महाराज कहने पढ़िए गुणिए नाम सब सुनिए अनुभव भाव न तरसे लोहा कंचन रिंड होए कैसे जो पारस नह परसे। श्री कबीर जी महाराज का भी ऐसा कहना है हर जस सुने न हर गुण गावे बातन ही असमान गिरावे ऐसे लोगन स्यों क्या कहिए जो प्रभ किए भगत ते बाहज तिन ते सदा डराने रहिए। ए भगत विचारां दा ते सिर्फ प्रयोग करदे ने जीव लेने हिरदे दे तल ते भावना दे तल ते और जद भावना करके प्रभु नाल जुड़दे ने तो इना दे अंदरों जो गीत फुटदे ने जो ज्ञान फुटदा है वो इस तरह है जैसे कि पहाड़ां दे चों कोई झरना वग तुरिया है। श्री नामदेव जी महाराज दे विचार कितने बुलंद ने ज्ञान कितना महान है उन्हां दे एक पावन पवित्र शब्द तो पता चलता है आम गाथा है और ओ भाई साहब भाई गुरुदास जी ने भी लिखी है कि कम किते प्यो चलिया नामदेव नू आग सुनाया। नामदेव नू सारी गल सुना दिती ठाकुर दी सेवा करें कर दे मूर्तियां रखियां सन ते नामदेव नू कहंदे ने तू अमृत वेले उठना है तू ठाकरा नू इशनान कराण लई नदी तों मांझी हुई गागर विच जल भर के लियाउणा है पवित्र गागर विच जल भर के लियाउणा है ते ठाकरा नू इशनान कराणा है बगीचे विच जाके फुल तोड़ने ने बगिया विच जाके ते तोड़े हुए फुलां दी माला बना के ठाकर दे गल विच पाणी है। सिर्फ इतना ही नहीं घर विच जिहड़ी कपिला गऊ है उसका दुध चोके तू ठाकरा नू पिलाणा है। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰਮ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਨਿਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕਿਧਰੇ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੋ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਾ ਆਵਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੂਜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਰਚਾ ਬੰਧਨ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਸੁਭਾਵ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪ ਉੱਠੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਮੂਰਤ ਵਿੱਚ ਗਾਗਰ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ नदी दे तट ते गए हैं गागर खूब मांझी है इशनान कीता है गागर नू भरे है ता आप दी दृष्टि जल जंतुआं ते पै गई मछलियां ते पै गई कुछ मेंढक सन उना ते पै गई कुछ कछुए सन उना ते पै गए आप दे अंदरों अमर गीत दा झरना इंज फुटिया आ नीले कुंभ भराई ले उद्दक ठाकर कोई स्नान करो पर 42 लख जीव जल में होते बीठल भेला काहे करो। महाराष्ट्र देश प्रभु दा एक नाम बीठल भी है उसे दाई आप प्रयोग कर देने बीठल नाम दा एक मंदिर भी है बीठल मंदिर पंडरपुर देश और वो तीर्थ है और बहुत वड्डी पूर्णमाशी वाले दिन भीड़ रहती है। श्री नामदेव जी महाराज कहंदन ए बीठल दस मैं की करा मैं पानी भरया है गागर मांझी है तेनू इशनान कराना है पर करा की पानी पवित्र नहीं है क्यों के 42 लख जूनिया ते आखर पानी दे च ने ते ओ सारा क्रिया कर्म पानी दे च ही कर दिया ने जन्म उना दा पानी दे च जीवन उना दा पानी दे च मरण उना दा पानी दे च सारी क्रिया पानी दे च और ए कुल मखलूक दा अद्धा हिस्सा पानी दे च। पुराने शास्त्रां दी गणत दे मुताबक 84 लख जोनियां ने जेदे चों 42 लख जल दे च ने 21 लख थल जंतु ने और 21 लख नब जंतु ने आकाश दे च उड़न वाले। इस ढंग नाल 84 लख दी गिनती कीती गई है पर ए अद्धा जीव मंडल सारे दा सारा पानी दे च है। तो नामदेव कहंदे ने जद जीवन पानी दे च है जन्म पानी दे च है मरण पानी दे च है ए पानी पवित्र नहीं हो सकदा ए ते अपवित्र है हे प्रभु मैं इस जल दा तैनू इशनान नहीं कराना खाली गागर लेके आ गए और सोच रहे ने अज ठाकरा नू इशनान नहीं कराना पानी ते अपवित्र है ते ए ते ठाकरा नू अपवित्र करना होवेगा पर ए सोचनी आप दे अंदर जो फुटी है
غالباً 11 سال دی عمر وچ چھوٹے نے بچے نے پتا باہر جا رہے ہیں تے پتر نو سمجھایا ہے یہ سب کچھ تو روز کرنا ہے پر اس معصوم بالک دے دھارمک سنسکار اتنے پربل نے تے بدھی اتنی اجول ہے آپ کہندے نے نہیں یہ جل تے اپوتر ہے تے اپوتر جل دے نال ہے پربھو میں تینوں اشنان کراواں تے کیویں کراواں چھوٹی جی ٹوکری لے کے آپ بگیا وچ گئے پھل توڑن لگے نے تے پھلاں دے اتے منڈلا رہے نے بھونرے تتلیاں آپ دیکھنے آئی ایک دم حیران ہوئے کہ شہد دیاں مکھیاں بھی پھلاں دے چوں رس کڈ رہی ہیں نے آپ کہندے نے پھل بھی پاون نہیں نے پوتر نہیں نے انہاں دا رس تے بھونرے لے جاندے نے انہاں دے چوں رس تے شہد دیاں مکھیاں کڈ کے لے جانیاں تتلیاں کڈ کے لے جانیاں لہذا انہاں پھلاں دی مالا پرو کے ہیٹھا کر میں تیرے گلے کس طرح پاواں جدکہ انہاں پھلاں دا استعمال بھونرے پہلے ہی کر لیندے نے تتلیاں پہلے ہی کر لیندیاں شہد دیاں مکھیاں پہلے ہی کر لیندیاں آ نیلے پھول پروئی لے مالا ٹھاکر کی ہوں پوج کروں پر پہلے باس لئی ہے بھونرے بیٹھل بھیلا کاہے کروں ہو بہو اس طرح دا واق بھگت رویداس جی مہاراج دا وی ہے مائی گوبند پوجا کہاں لے چراؤ اور نہ پھول انوپ نہ پاؤں دودھ تا بچرے تھنوں بڑاریو پھول بھور جل مین بگاریو ہے پربھو میں کیویں پانی نال تینو اشنان کراواں او تے جل اپوتر کر دتا ہے مین نے پھول تے اپوتر کر دتے نے بھوریاں نے تتلیاں نے شہد دیاں مکھیاں نے ہن آپ نو خیال آیا کہ تیجا کم پتا نے سونپیا سی کپلا گو دا دودھ ٹھاکراں نو پلانا ہے تو اپنی ماتا نو آکھیا گو چو دیو دودھ چاہیدا ہے نام دیو دی ماتا نے گو دا بچڑا کھولیا بچڑا تھن چونگن لگ پیا تے نام دیو جی مہاراج اپنی ماں نو کہندے نے پہلے اے بچڑا دودھ پیے گا ہاں میرے بچے پہلے بچڑا دودھ پیے گا تا ہی گو دودھ دین دی تو آپ کہن لگے ماں میں نو یہ دودھ نہیں چاہیدا اس دودھ دا بھوگ میں ٹھاکراں نو نہیں لوانا کیوں آنی لے دودھ ردھائی لے کھیرن ٹھاکر کو نیوید کروں پر پہلے دودھ بتاریو بچھرے بیٹھل بھیلا کاہے کروں اے بیٹھل دس میں کی کراں اے دودھ تے پہلے چونگ گیا بچھڑا انہیں پوتر کر دیتا ہے تھنا دچ دودھ تا بچھرے تھنوں بٹاریو بھگت رویداس جی مہاراج کہندے نے آنی لے دودھ ردھائی لے کھیرن ٹھاکر کو نیوید کروں پر پہلے دودھ بٹاریو بچھرے بیٹھل بھیلا کاہے کروں اے بیٹھل دس میں کی کراں دودھ تے اپوتر ہو گیا اتے پہلے بچھڑے نے پی لے تے میں تے تینوں پہلے بھوگ لوانا سی پر اتے بچھڑا ہی پہلے بھوگ لا گیا اور تھنا دچ ہی جھوٹا کر گیا تو میں اس دا بھوگ لواواں تے کیویں لواواں اج پوجا نہیں ہوئی اج ٹھاکراں دا اشنان نہیں ہویا اج ٹھاکراں دے اگوں دودھ نہیں رکھیا گیا دودھ نہیں پلایا گیا آپ بیٹھے نے سوچ دے چ پتا ناراض ہوئے گا پتا اوکھا ہوئے گا اس طرح دیاں سوچاں دے چ آپ پئے نے تے آپ دے اندروں امر دھنی انج اٹھی ای بے بیٹھل او بے بیٹھل بیٹھل بن سنسار نہیں تھان تھنانتر پرنوے ناما پور رہو توں سرب مہی ہے پربھو جد میں سوچیا کہ تینوں اشنان کراواں تاں توں مچھی ہو کے پہلے آپ ہی جل وچ اشنان کر رہے ہیں میں تینوں کی اشنان کراواں ہے پربھو جد میں تینوں سوچیا تیرے بارے سوچیا کہ اشنان کراواں تاں اے وی وچار پیدا ہوئے کہ اشنان تے اس نوں کرایا جاندا ہے جو میلا ہو جائے کیا توں میلا ہو جانا ہے صاحب کہندے نے گرو ارجن دیو جی مہاراج ہم میلے تم اوجل کرتے ہم نرگن توں داتا توں تے اجل ہے توں تے پاون ہے توں تے پوتر ہے میلے تے اسی ہو جانے ہیں سڈا تن میلا سڈا من میلا ہے پربھو توں تے نرمل ہے توں تے سوچھ ہے تو تے پاون ہے
तू ते अति पवित्र है। तू श्री नामदेव जी महाराज कहंदे ने इशनान ते मैं तेनू तां करावा कि तू मैला होवे, पर तू ते कदी मैला होंदा ही नहीं। और तेनू की इशनान करावा, तू जल जंतु होके अठे पैर जल विच रह रहे हैं, सागरां विच रह रहे हैं, दरियावां विच रह रहे हैं, झीलां विच रह रहे हैं, तेनू की इशनान करावा। इंज ब्रह्म ज्ञान दा पूर्ण बोध भगत नामदेव जी महाराज दे अंदरों पैदा होया, हे प्रभु जल विच तू मच्छी विच तू, तू ते व्यापक है। ईबे बीठल उबे बीठल, बीठल बिन संसार नहीं, थान थनंतर प्रणवे नामा, पूर रहो तू सर्वमयी। श्री नामदेव जी महाराज अगा फुलां बारे ऐसा कहंदे ने, हे प्रभु जद मैं सोचिया कि तेनू फुलां दी माला बना के पहनावा, ते तू तितली होके शहद दी मक्खी होके भौरा होके आप ही पहले रस ले लेना, तेनू की मैं माला पहनावा। जद मैं सोचिया तेनू दुध पिलावा, पर तू बछड़ा होके आप ही पहले दुध पी लेना, आप ही भोग ला लेना, गऊ तू बछड़ा तू दुध तू, तू ही तू है। इबे बीठल उबे बीठल, बीठल बिन संसार नहीं, थान थनंतर प्रणवे नामा, पूर रहो तू सर्वमयी। इत्थों ऐसा भी पता चलता है कि श्री नामदेव जी महाराज निर्गुण ब्रह्म दे उपासक ने, व्यापक ब्रह्म दे उपासक ने। आप दे ऐसे बोल भी ने, हिंदू पूजे देहुरा, मुसलमान मसीत, नामे सोई सेविया, ना देहुरा ना मसीत। हिंदू लभदा है मूर्तियां दे प्रभु नू, मुसलमान लभदा है खानकाह दे चों, पर नामदेव जी महाराज कहंदे मैं ते जिधर देखदा तेरे तो बिना कुछ है ही नहीं, तू ही तो है। इस नू श्री नंद लाल जी महाराज ने इंज बयान कीता है, ब्राह्मण मुश्ताक बुत जाहिद फिदाए खानकाह, हर को जा जामे मुहब्बत दीदायम सरशारस्त। ब्राह्मण लभदा है तेनू बुतां दे चों, और मुस्लिम लभदा है तेनू खानकाह दे चों, पर हर को जा जामे मुहब्बत, मैनू ते हर थां ते तेरी मुहब्बत तेरा प्यार ही दिखाई देंदा है, चाहे वह मंदिर है चाहे वह मस्जिद है, हर पासे तू ही तो है। तो श्री नामदेव जी महाराज कहंदे हिंदू पूजे देहोरा, मुसलमान मसीद, नामे सोई सेविया, ना देहोरा ना मसीद, तो फिर किथे है? जे मंदिर ते मस्जिद विच नहीं तो फिर किथे है? तो नामदेव कहंदे सबे घट राम बोले, राम बोले रामा बोले, राम बिना को बोले रे, मेरा राम घट घट विच बोल रहे है। और राम

श्री नामदेव जी महाराज उसके पुजारी ने नामदेव जी महाराज की दृष्टि विच प्रभु एक व्यापक सत्ता है। वो अखंड ज्योति है, खंडित नहीं है, टुकड़िया टुकड़िया विच नहीं है, अखंड ज्योति है, व्यापक है। पर उस तक किवें पहुंचिए ते उस नूं किवें प्राप्त करिए, नामदेव दे ये आखरी बोल आप जी दे समक्ष भेंट करा। श्री नामदेव जी महाराज दा फरमान, ज्यों जल मांझे माछलो मार्ग पेखणो ना जाई, ज्यों आकाशे पंखी अलो खोज निरखो ना जाई। उस प्रभु नूं किवें तलाश करिए ते उस परमात्मा तक किवें पहुंचिए जो व्यापक है, किवें पहुंचिए। मार्ग की है आखिर, रस्ता की है। तो नामदेव कहिंदे ने जैसे जल विच मच्छी चलदी है ते रस्ता बनदा है, उंज बना बनाया कोई रस्ता नहीं है, बना बनाया कोई मार्ग नहीं है, चलदियां ही मार्ग बनदा है। आसमान दे बने बनाई कोई सड़क नहीं है, पंछी उड़दा है ते मार्ग बनदा है। उंज कोई मार्ग नहीं, उंज कोई रस्ता नहीं, बस उड़दियां ही रस्ता बनदा है ते मच्छी दे चलदियां ही सागर विच मार्ग बनदा है। उंज कोई मार्ग नहीं। मनुख जैसे जैसे राम दा रटन करना आरंभ कर देंदा है, राम दा मार्ग बनना भी शुरू हो जाता है। गुरु गुरु दी आराधना जैसे मनुख आरंभ कर देंदा है, गुरु गुरु दा नाम लेना जब शुरू कर देंदा है, तो गुरु दा मार्ग भी बनना नाल शुरू हो जाता है। बना बनाया मार्ग नहीं है, इत्थे जपदिया मार्ग बनेगा, इत्थे नाम उचारण करदिया ही मार्ग बनेगा। जमीन दे उत्ते सानू बनिया बनाईया सड़कां मिल सकदियां, चलना सानू पैंदा है, सड़क नहीं बनानी पैंदी। पर इत्थे अध्यात्मक मंडल दे उत्ते ऐसा है कि असी जद चलांगे तो चलदियां ही सड़क बनेगी। जैसे असी पृथ्वी ते भी कई दफा देखदे आं कि लगातार मनुख किसी एक थां तो लंघन तो अपने आप पगडंडी बन जांदी, एक रेखा बन जांदी है, एक मार्ग बन जांदा है। अध्यात्मक मंडल विच ऐसा है, वाहिगुरू वाहिगुरू जपना आरंभ कर देईए, बस आरंभ करदिया ही मार्ग बनता है। जैसे मच्छी चले तो रस्ता बनता है, उंज कोई रस्ता नहीं। इत्थे इंज पहुंचना है परमात्मा तक, जिवें मच्छी एक थां तो दूसरी थां ते पहुंचती है, जिवें पक्षी एक थां तो दूसरे थां तक पहुंचता है। इस नूं खोलिया परम दार्शनिक संत गुरु घर दे वेद व्यास भाई गुरदास ने। गुरुमुख खोज अगम है, ज्यों जल अंदर मीन फिरंदा, गुरुमुख खोज अलख है, ज्यों आकाशे पंख उड़ंदा। गुरुमुख जिड़ा है वो परमात्मा दी खोज इस तरह कर लेंदा है जिवें सागर विच मच्छी एक थां तो दूसरी थां ते पहुंच जांदी है, जिवें पक्षी एक थां तो दूसरी थां ते पहुंच जांदा है। बिना मार्ग दे उड़दियां ही मार्ग बनदा है, चलदियां ही मार्ग बनदा है। इस तरह गुरु का सिख जब जपदा है तो जपदिया ही जपदिया परमात्मा तक पहुंच जाता है, ईश्वर तक पहुंच जाता है, अकाल पुरख तक पहुंच जाता है। हू बहो श्री नामदेव जी महाराज यही कुछ कह रहे ने, मार्ग बना बनाया नहीं है। राम राम जपदिया ही राम दा मार्ग बनेगा और राम दी लीनता नसीब होगी। राम नाम विच लीन, बिठल बिठल विच लीन, श्री नामदेव जी महाराज अपने गीतां दे राहीं जगत नूं बिठल विच लीन करदे रहे, राम विच लीन करदे रहे। और भ्रमण करदिआं करदिआं अनेकां नूं आपने राम विच लीन कीता, बिठल विच लीन कीता, और लीन करदिआं करदिआं एक दिन आप सिर्फ मानसिक तौर ते नहीं शरीरक तौर ते भी उस बिठल विच लीन हो गए, उस प्रभु देच लीन हो गए। और लीनता ऐसी होई, सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थी आ राम।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: Guru Tegh Bahadur Sahib Maharaj, Guru Har Gobind Sahib Ji, छेवीं संतान ने, छेवीं संतान तां शब्द वरते है, हजूर दे आगमन तो पहला गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी दे चार बेटे और एक बेटी है।

पट कीर्त साहिब जी ने अज दे इस अमृत बचन विच सब तो पहला आदि गुरु धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी दी एक मन खो के उस परमात्मा दी प्रेमा भगती दा जिक्र कीता है। पहला बचन पट साहब ने कहा, नानक नाम निरंजन जानियो, धन गुरु नानक साहब कृपालू जी ने उस परमात्मा दे नाम नू जान लिया, किन्नी भगत प्रेम लिवलाई, उस परमात्मा दी वाहगुरु जी दी भगती प्रेमा भगती धन गुरु नानक साहब जी ने एक मन खो के लिब ला के अपने अंदर दे पूर्ण टिका दे विच उस परिपूर्ण परमेश्वर वाहगुरु जी दी भगती कीती। आरंभता है प्रेमा भगती तो। धन गुरु नानक साहब जी ने हठ दी गल नहीं कीती। गुरु नानक साहब ने बद्दा चट्टी कोई काम कर ली सानू नहीं प्रेरिया। हजूर ने बेरसे कर्म कांडा विच सानू प्रवृत्त नहीं होन दिता। धन गुरु नानक साहब जी ने ता परमात्मा नू प्रेम करके उस दी प्रेमा भगती ली सानू प्रेरिया है। जिवें असी बाणी विचों धन गुरु नानक साहब जी दे अमृत बचन भी पढ़ने हां, हजूर ने एक बहुत रहमत भरिया कृपा भरिया बचन कहा। गुरु नानक साहब जी दी जोत ने जे बाबा फरीद साहब ने यह बचन कहे कि तन तपै तनूर ज्यों, बालन खड बलन पैरी थका सिर जुलां, जे मुंह पिरी मिलन, के अपने तन नूं तंदूर दी तरह तपा दिया। हुण एक हठ है किन्ने जेड़ियां खड़ियां ने इनू इस तरह बाला के जिमें तंदूर दे विच लकड़ां बल दिया ने। तन तपै तनूर ज्यों, बालन खड बलन पैरी थका, जे पैरां नाल चलदिया होया थक जावा, सिर जुलां मैं पैरां दी थां ते सिर परने खो के चल पवां, जे मुंह पिरी मिलन जे मैनू मेरा प्यारा मिल जाए। अगे सतगुरु ने प्रेमा भगती कर ली, बाहर दी भटकना तो बचा, सानू अंदर जुड़ के लिव ला के भगती करन दी गल सिखाई। हजूर ने नाल ही बचन कर दिता के तन ना तपाए तनूर ज्यों, बालन खड ना बाल, अपने तन नू तंदूर दी तरह तपा ना, इना खडियां नू बालन बना के तंदूर विच फूक ना, तन ना तपाए तनूर ज्यों, बालन खड ना बाल, सिर पैरी क्या फेड़िया अंदर पिरी निखार। देख तू इना सिर ने इना पैरा ने तन दे अंगा ने की बिगाड़िया, तू अपने अंतर आत्मे उस प्यारे वाहगुरु जी दी प्रेमा भगती करके ओनू तक लै। हुण इत्थे एक शब्द मैं अर्ज करनी चाहना कि इह शब्द आया प्रेमा भगती, जां इउं कह लो किन्नी भगत प्रेम लिव लाई, कि प्रेम नाल लिव ला के रब दी भगती कीती। प्रेम एक परमात्मा दी ओ बख्शी हुई शक्ति है जेड़ी हर एक जीव अंदर परमात्मा ने टिकाई है। प्रेम है की असी आम तौर ते शब्द ए भी वरतने हां कि प्यार ही परमात्मा है। गुरु कलगीधर जी दे बचन पढ़ने हां, साच कहो सुन लेहो सब है जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो। प्रेम दरअसल की है? कोई मनुख ऐसा नहीं जिदे अंदर परमात्मा ने ए शक्ति प्रेम वाली एनर्जी प्रेम वाली ऊर्जा प्रेम वाली ताकत नहीं टिकाई। केवल मनुख नहीं, हर जीव दे अंदर परमात्मा ने ए शक्ति ए अंश ए ऊर्जा टिका दिती है। केवल जीव ही नहीं, इत्थों तक कि जमीन दे विच पैदा होई फसल, जमीन दे विच पैदा होए पौधे, जमीन दे उत्ते पैदा होए रुख,
परमात्मा ने उन्हां दे अंदर भी इस शक्ति नूं टिका दिता है। प्रेम एक अंदर दी खिच है, प्रेम एक परमात्मा दी दित्ती कोई ओ दात है जिहड़ी वख वख जीवां विच परमात्मा ने वख वख तरीकियां नाल टिका दित्ती है। जिवें उदाहरण कई वारी अर्ज करना हुंना, हजूर ने बाणी विच भी बचन कीता है, कहन लगे सरवर कमल किरण आगासी बिगसै सहज सुबाही। हुण कमल दा फुल जिहड़ा है वह सरोवर विच है ते किरण सूरज जिहड़ा है वह आसमान विच है। दोनां दा करोड़ां माइल्स दा करोड़ां कोह दा इन्हां दा फासला है। इन्हां करोड़ां मीलां दी दूरी होण दे बावजूद कमल विच परमात्मा ने एक इहो जी शक्ति टिका दित्ती, ऊर्जा टिका दित्ती जिहड़ा सूरज नूं अपने तो करोड़ां कोह दी दूरी होण दे बावजूद भी उहदियां किरणां नूं देख के पूर्ण तौर ते खिड़ा विच आ जांदा है। उह किहड़ी ताकत है, उह किहड़ी मिकनातीस शक्ति है कि जिहड़ी इस कमल दे फुल नूं चिक्कड़ विच खिड़े होए नूं पूर्ण तौर ते खिड़ा देंदी है। सिर्फ अर्ज कर रहे हां कि प्रेम भाई साहब भाई गुरदास जी ने अपनी रचना विच बहुत सोहणियां उदाहरणां कुछ दित्तियां गुरु परमेश्वर दी प्रेमा भगती दे मुतलक कि गुरु दी भगती परमात्मा दी प्रेमा भगती कैसी है। हर एक अंदर परमात्मा ने यह ताकत ए शक्ति ए ऊर्जा टिका दिती है। देखो हजूर ने बाणी विच बचन कहे ने चंद्रमा ते चकोर दा आपस विच कितना फासला है, दोनां दी दूरी है। ना तो चकोर नूं किसे ने स्कूल विच किसे ने किसे कॉलेज विच जां किसे ने अपने घर विच पिंजरे विच बंद करके उन्हूं सिखाया कि आओ देख रात नूं चंद्रमा निकलना ते तू सारी रात चकोर चंद्रमा नूं एक टिक देखना है। सिर्फ अर्ज कर रहा प्रेमा भगती प्रेम दी दात हर एक अंदर परमात्मा ने टिकाई। चकोर नूं किसे ने तालीम नहीं दिती, चकोर नूं किसे ने यह पाठ नहीं पढ़ाया कि आसमान दे विच पैदा हुए चंद्रमा नूं देख के तू सारी रात एक टिक एक नजर नाल तकी जाना है। हालांकि इथों तक कि चकोर दे मौत दा कारण भी कई बार चंद्रमा नूं देखना हो जाता है, क्योंकि चकोर सारी रात जदों चंद्रमा आउंदा है आसमान ते एक टिक उहनूं नजर टिका के देख दीए, चंद्रमा जदों ये अपनी थां सारी रात बदलता है अपनी गतिशील चंद्रमा गति नाल जदों रुख चेंज करदा है, पर चकोर जे चढ़ते वाले पासे चंद्रमा आया पूर्णमाशी दा ते उन्हें ये नहीं कि चंद्रमा दे नाल नाल अपने लतां नूं अपने जिस्म नूं कमाना है, उहदा सुभाग है। चंद्रमा जे इस पास्यों चढ़िया चढ़ते वाले पास्यों शाम नूं उन्हें सवेर तक लेंदे वाले पासे आउणा है। चकोर अपने पैरां नूं सारी रात एक थां ते थिर रखेगी, सिर्फ अपनी गर्दन नूं ही चंद्रमा दे नाल मोड़ी जाए, गर्दन मोड़दी है कदी अपने पैर नहीं। इन्नी को दी सुरत इन्ना टिका कि उन्हूं अपने जिस्म दा भी कोई पता नहीं, केवल ता केवल अपनी गर्दन नूं झुका के अपनी पिठ ते ला लैंदी है ते कई वारी ओदी गर्दन झुकना भी ओदी मौत दा कारण बन जांदा है। पर ओ केड़ी खिच है, चकोर नूं किसे ने तालीम नहीं दित्ती, चकोर नूं किसे ने पढ़ाया नहीं, चकोर लई कोई विद्या दा साधन नहीं, पर परमात्मा ने चकोर दे अंदर चंद्रमा दे प्रति एक खिच पैदा कीती, जिस खिच नूं जे किते मनुख समझे उसे खिच नूं ही प्रेम किया गया है। हुण ओ दिस नहीं रही पर ओदा चंद्रमा नाल नेक है। भाई गुरदास जी दी रचना विचों अर्ज कर रहे भाई साहब ने पहला बचन किया चंद चकोर प्रीत है, चकोर दी चंद्रमा नाल प्रीत है प्रेम है ते वो एक टिक चंद्रमा नूं देख रही है। चंद चकोर प्रीत है लाए तार निखाले, तार दा अखरी अर्थ हुंदा लिव लाणी, एक टिक देखी जाना। भाई साहब कहिंदे ने देखो परमात्मा ने प्रेम एक जानवर विच एक जीव विच एक पंछी विच भी पैदा कर दिता, एक टेको के चंद्रमा नूं देख रही है। चंद चकोर प्रीत है लाए तार निखाले, चकवी
सूरज खेत है मिल खून सुखाले। हुण इत्थे भावे शब्द उन्होंने सूरज खेत क्या है कि चकवी दा सूरज नाल नेक है। दरअसल ओदा सूरज नाल ने नहीं, चकवी दा ने तां अपने चकवे दे नाल है, क्योंकि सूरज चढ़ नाल चानन विच उन्हां दा मिलाप है ते अंधकार विच रात दे खनेरे विच उन्हां दा विछोड़ा पै जांदा है। हुण इक रात दा विछोड़ा है, सारी रात चकवी ते चकवा एक दूजे नूं पुकारी जा रहे ने। हजूर दे प्यारे सिख भाई गुरदास कहिंदे ने उस

0: परमात्मा ने एक खिच हर एक दे विच पैदा की थी। कमल विच खिच है सूरज नूं देख के, चकवी ते चकवे अंदर खिच है, चंद्रमा ते चकोर दी खिच है। भाई साहब ने दूसरा बचन कहा, पहला सी चंद चकोर प्रीत है, लाए त्यार तार निखाले, चकवी सूरज खेत है, मिल खोन सुखाले, निहो कवल जल जानिए, खेड़ मूंह बखाले। खुण पानी ते कमल दा फुल आपसी कैसा प्यार पै कर दे, कि सुकी मिट्टी दे उते कमल दे फुल कदी प्रफुल्लत हुंदे देखे ने। जमीन ता ओही है, छप्पड़ टोबा ता ओही है, पर कमल दे फुल ना सुके कदी टोबे विच, ना सुकी जमीन ते प्रफुल्लत होणगे। पानी रुकण दी देर है ते सौण दे महीने विच कमल दे फुल अपने आप नूं प्रफुल्लत करदे ने, ते पानी दे विच ओ पूर्ण तौर ते खिड़ जांदे। अगे मैं अर्ज करनी है, कमल दे फुल दी खिच सूरज नाल भी है, कमल दे फुल नूं जिंदगी पानी भी दे रहा है, पर जेड़ी दिसदी नहीं वो खिच पानी विचों उन्हूं मिल रही है। भाई साहब ने चौथा बचन कीता, कहन लगे, मोर बबीए बोल दे वेख बदल काले। हुण काला बदल असमान ते चढ़ के आउंदा है, जितना मोर उन्हूं देख के खुश हुंदा है, हुण बदल दा ते मोर दा आपसी की रिश्ता है। ओ आसमान दे उते, ओ धरती दे उते, जदों काली घटा चढ़ी ते मोर इको दम पहला पान लग पिया, ते अपने पंखों ने पूर्ण तौर ते खलार लै बखेर लै। उस बदल नूं देख के मोर दे अंदर भी परमात्मा ने एक खिच पैदा कर दिती, जेड़ी बदल नूं देख के खड़ाओ विच आया ते नचन लग पिया। पपीए वल झाती मारिए, सच जाण्यो बाकी साल दे महीने पपिया कदी भी उची नहीं पुकारदा, पर जदो खाड़ ते सौण दा महीना हुंदा भादों दा, उदो पपीए दे गले विच वी राग पैदा हो जांदा, ओ भी बदलां नूं देख के उची उची पुकार लग पिया। ओदे विच भी एक खिच है, चकोर विच, कमल फुल विच, चकवी विच, मोर ते बबीए विच, ते सच जाणो मां ते पुत्तर दी भी एक खिच है। इस्त्री दी पति ते पत्नी दे अंदर भी एक दूजे प्रति खिच है। पर भाई साहब ने सारियां गल्लां करके कहन लगे, चंद्रमा दी चकोर नाल प्रीत है, चकोर दी चंद्रमा नाल प्रीत है, पर सच जानी चंद्रमा बेवफाई कर सकदा है।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington. 1550 KRPI रेडियो ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।
2: क्या हाम जी अजंत बेचारे बरना साके, एक रोमाई ब्रह्म महेश सिद्ध मुन इंद्रा बेअंत ठाकुर, तेरी गत नहीं पाए क्या कथी है किसे कथन ना जाई, जह जह देखा तह रहा समाई रहाव, जह महा भयान दुख जम सुनिया तह मेरे प्रभ तू है सहाय, शरण परयो हर चरण कहे प्रभ गुरु नानक को बूझ बुझाई। बिलावल महला पंजवा। अगम रूप अभिनाशी करता पतित पवित एक निमुख जपाइय, अचरज सुनियो प्रताप भेटले संत चरण चरण मन लाइय, कित विधिया कित संयम पाइय, कहो सुरजन कित जुगती त्याय रहाओ, जो मानुख मानुख की सेवा ओह तिसकी लई लई फुन जाइय, नानक सरन सरन सुख सागर मोह टेक तेरो एक नाइय, नानक सरन सरन सुख सागर मोह टेक तेरो एक नाइय। बिलावल महला पंजवा। संत सरन संत टहल करी तंद बंद, अर सगल जंजारो अवरकाज ते छूट परी रहाओ, सुख सहज कार कनो आनंदा गुर ते पायो नाम हरी, ऐसो हार रस बरन न साको गुरपुरै मेरी उल्ट धरी, पेखियो मोहन सब कै संगे ऊनना काहू सगल परी, पूर्ण पूर रहो कृपा निद कहो नानक मेरी पूरी परी। बिलावल महला पंजवा। मन क्या कहता हौ क्या कहता जान